तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियुलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्ची में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया और

0: फीफा विश्व कप में 5 बार चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और जकार्ता के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
3: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नेत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नेत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। यह बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: भारत असम के गुवाहाटी 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
4: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टोकरेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेनदेन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
1: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई।
3: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए मात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता

से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए

0: ने विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी से हे चंद्रपूर केंद्र आहे। श्रोते हो ठीक 8:15 वाजलेत। आता प्रसारित करीत आहोत निरोगी आरोग्य या कार्यक्रमात एनेस्थेशिया अर्थात बधिरीकरण या विषयावर डॉक्टर सुनील दीक्षित यांची हेमा बहादे यांनी घेतलेली मुलाखत। तत्पूर्वी एक छोटासा संदेश। पोलीस
3: मिस सीमा।
2: हो बोलते।
3: लगेज पोलीस स्टेशनला या। थांबा, काहीतर घरी येऊ। हा
2: पण का? मी
3: त्या दुसऱ्या खोलीत जा। तुमचा मुलगा आमच्या कस्टडीमध्ये आहे आणि तुम्हाला डिजिटल अरेस्ट केलाय।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: एक हक द्या, वाचाल।
2: इतके पैसे?
3: बरं ठीक आहे, एक लिंक पाठवली आहे, लगेच प्रोसेसिंग साठी 30,000 द्या, नाहीतर मुलगा जेल मध्ये जाईल।
2: जेल मध्ये तर तू जाणार, तुझा चेहरा रेकॉर्ड झालाय।
3: अरे
2: डिजिटल अरेस्ट असं काही नसतं, हे सगळं फ्रॉड आहे। म्हणून घाबरू नका, पोलीस, बँक, RBI इत्यादींच्या नावाने येणाऱ्या सायबर गुन्हेगारांच्या फोन किंवा व्हिडिओ कॉल पासून सावध रहा। त्यांना पैसे पाठवू नका आणि लगेच पोलिसात रिपोर्ट करा।
4: हॅलो मम्मा।
2: हाय।
4: RBI सांगते,
2: जाणकार बना, सतर्क रहा। श्रुती हो नमस्कार। निरामय आरोग्य या कार्यक्रमात तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करते। श्रुती हो एनेस्थेशिया म्हणजेच भूल देणं हे आपल्या सर्वांनाच ठाऊक आहे। कोणतीही मोठी शस्त्रक्रिया करण्यासाठी रुग्णाला वैद्यकीय दृष्ट्या प्रेरित कोमाच्या स्थितीत ठेवणे आवश्यक असतं, नाहीतर त्यांचा त्रास, त्यांच्या वेदना वाढलेल्या असतात। श्रोते हो जनरल एनेस्थेशिया ही वेदनाशामक स्थिती आहे जिथे रुग्ण चेतना गमावतो, ज्यामुळे सहजपणे रुग्णावर ऑपरेशन करू शकतात। श्रोते हो मग ते छोटं असो की मोठं, एनेस्थेशिया देण्यात येतो म्हणजे तिथे भूल देण्यात येते जेणेकरून त्या वेदना त्या रुग्णाला जाणवत नाही। तर श्रोते हो आजच्या निरामय आरोग्य कार्यक्रमात आपण याच विषयावर म्हणजे एनेस्थेशिया या विषयावर जाणून घेणार आहोत आणि यासाठी आज आपण आपल्या आकाशवाणी स्टुडिओमध्ये आमंत्रित केलेले आहे एनेस्थेशियालिस्ट डॉक्टर सुनील दीक्षित सरांना। तर सर कार्यक्रमात आपलं अगदी मनापासून स्वागत आहे। नमस्कार सर।
5: नमस्कार मॅडम।
2: सर आज आपण महत्वाच्या विषयावर चर्चा करणार आहोत म्हणजे एनेस्थेशिया म्हणजे भूल देणं, आणि हे फार महत्वाचं असतं म्हणजे आपण ज्याला म्हणूया

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर स्वागत आप सभी का। यह है राजनीति फिल्म का गीत। मोहित चौहान और अंतरा मित्रा की आवाजें। प्रीतम का संगीत इरशाद कामिल ने बोल लिखे।

0: राजनीति फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मोहित चौहान और अंतरा मित्रा की आवाजें थी, इरशाद कामिल के बोल थे, प्रीतम का संगीत था।
1: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
2: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी, आईवीएफ या आईयूआई हम लोग नहीं कर सकते, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन डी3, ओमेगा 3 और

0: थोड़ा कम है, दिख जाता है पेशेंट में कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, बिटवेल हो, ये सब देकर।
1: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। श्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आज 6 जुलाई है, आज वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जा रहा है। हर वर्ष ये 6 जुलाई को मनाया जाता है। इसे मनाने का ये उद्देश्य उन बीमारियों के प्रति लोगों को सचेत करना जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। इस दिन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि 6 जुलाई को लुई पाश्चर ने रेबीज के टीकाकरण का पहला सफल प्रयोग किया था। जूनोटिक रोगों के उदाहरण है रेबीज, बर्ड फ्लू, कोविड 19 और आदि आदि बीमारियां, जिसकी उत्पत्ति को लेकर अभी भी वैज्ञानिक का अध्ययन जारी है। इससे बचाव के उपाय हैं पालतू पशुओं का समय समय पर टीकाकरण, सुरक्षित भोजन और बीमार पशुओं की तुरंत जांच कराना। विश्व जूनोसिस दिवस हमें ये याद दिलाता है कि पशुओं से फैलने वाले रोगों से हम बचे रहें, स्वच्छता का पूरा ध्यान दें, समय समय पर टीकाकरण बेहद जरूरी है और सचेत रहें हमेशा।

बॉर्डर टू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाजें दिलजीत दोसांझ, परंपरा टंडन, सचेत टंडन के आवाजों में ये गीत आपने सुना। कौसर मुनीर ने इस गीत को लिखा था और सचेत टंडन, परंपरा टंडन ने मिलकर संगीत तैयार किया था। चित्रलोक कार्यक्रम आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आपको गीत सुनवाएंगे।

0: चित्रलोक कार्यक्रम में आपका ब्रेक के बाद फिर स्वागत।
1: मॉडर्न दुनिया, मॉडर्न जमाना, भूल जाओ मर।

सब कुशल मंगल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सोनू कक्कर और वंदना सक्सेना की आवाजें थी। समीर अंजान ने इस गीत को लिखा था। साथियों, हरे भरे लहलहाते पेड़ पौधे, सुंदर बहती पुरवैया, ये सभी कितने सुंदर लगते हैं ना। और इन पेड़ पौधों की छाव में बैठने और इन्हें निहारने में बड़ा अच्छा लगता है। बैठकर देखिए साथियों, इन दिनों 1 से 7 तारीख तक वन महोत्सव मनाया जा रहा है। वन महोत्सव सप्ताह हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है और इस वर्ष केवल पौधा ही न लगाएं बल्कि उसके संरक्षण का भी संकल्प लें, यानी उनके देखभाल के, उन्हें सींचना, उन्हें संवारना, उन्हें निहारना, सब कुछ करते रहिए। पेड़ स्वच्छ हवा, शीतल छाया और आने वाली पीढ़ियों का सुरक्षित भविष्य है। तो आइए हरियाली बढ़ाएं और धरती को मुस्कुराने का अवसर प्रदान करें।

लापता लेडीज फिल्म का ये गीत आपको श्रेया घोषाल की आवाज में सुनवा रहे हैं। स्वानंद किरकिरे गीतकार हैं और राम संपत संगीतकार।

धीमी चले पुरवैया लापता लेडीज फिल्म का ये बहुत ही प्यारा गीत आप श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में सुन रहे थे। स्वानंद किरकिरे ने इस गीत को लिखा था और राम संपत ने इस गीत को संगीत से संवारा था।

एनी में फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें ऐश्वर्या कुमार, दर्शना मेनन और रीना गिलबर्ट और यशिका सिक्का की थी। अब इसी गीत के साथ ही सविता सिंह को आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। आप सकुशल, स्वस्थ और सानंद रहिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

ये है विविध भारती। आज के फनकार प्रोग्राम सुनिए थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: परीक्षित साहनी के नाम से दोस्तों यूं तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन फिल्मों में प्रवेश के समय उनका फिल्मी नाम था अजय साहनी। परीक्षित से अजय बनने की कहानी आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: जब मैं अनोखी रात में काम कर रहा था तो संजीव ने कहा, यार मेरा नाम दरअसल है हरी भाई जरीवाला, और अगर मैं अपना नाम हरी भाई जरीवाला दूं स्क्रीन पे तो मैं दो दिन नहीं चलूंगा। अगर तू ये नाम देगा तो तू नहीं चलेगा, क्योंकि ये कोई प्रोनाउंस नहीं कर सकता। बंगाली में परीक्षित कहते हैं, पंजाबी में कुछ परीक्षित कहते हैं, यहाँ पे हिंदी वाले परीक्षित कहते हैं। ये नाम बड़ा मुश्किल है, और मैं सच सच आज कह रहा हूँ आपको, मैं अपने आप को बड़ा बदकिस्मत समझता हूँ कि मुझे पिताजी ने ये नाम दिया। ये नाम दरअसल दिया टैगोर साहब ने। टैगोर साहब वहां पे बैठे अपना क्या नाम है शांति निकेतन में, जब मेरी माताजी के गर्भ में था मैं, जब वो गर्भवती थी, जब मैं उनकी कोख में था, तो वो इम्तिहान दे रही थी बीए का, वही शांति निकेतन में। वह मेरे पिताजी और माताजी वहां काम किया करते थे एज प्रोफेसर, तो वो बीए का इम्तिहान दे रही थी। तो गुरुदेव टैगोर ने कहा, अभी ये इसके पेट में जो बच्चा है उसने भी दे दिया बीए का इम्तिहान, इसका नाम परीक्षित रखना अगर लड़का होगा तो।
0: अभिनेता संजीव कुमार ने परीक्षित को अपना मनपसंद नाम दिया अजय साहनी। उनकी शुरुआती कई फिल्मों में उनका यही नाम था अजय साहनी।
1: और उसके बाद फिल्म हिट हो गई तो पवित्र पापी हिट हो गई, फिर उसके बाद वो हिट हो गई क्या नाम है समाज को बदल डालो, फिर बस अजय साहनी शुरू हो गया। और मुझे लगे कि ये हो क्या गया दुनिया में।

0: परीक्षित साहनी की अधिकतर पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल्स में हुई। बाद में दिल्ली और पुणे में उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करने वो रूस जा पहुंचे। हालात कहीं अकस्मत, जब वो लौटे तो डायरेक्टर बनते बनते इंडिया में आकर एक्टर बन गए।
1: कहानी बड़ी अजीबोगरीब है कि अपना अशीत सेन साहब मॉस्को आए थे, उनके साथ दोस्ती हो गई मेरी, और जब मैं वापस लौटा तो मैं ये पवित्र पापी फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा था। हमने सुनील दत्त साहब को साइन कर लिया था, तनुजा को साइन कर लिया था, गाने रिकॉर्ड हो चुके थे। मैं अपने आप को बड़ा इम्पोर्टेंट महसूस कर रहा था, बड़ा मजा आ रहा था मुझे कि मैं अब मैं डायरेक्शन करने जा रहा हूँ। तो बीच में एक थोड़ा वक्त था फिल्म होने में, तो अशीत सेन साहब एक दिन मिले, वो मुझे याद आया कि तो मॉस्को में मुझे मिले थे, और उन्होंने कहा भी मैं एक छोटी सी फिल्म बना रहा हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, हम 24 दिन में खत्म कर देंगे, और उसमें एक छोटा सा रोल है। तो मेरे एक आदत थी उसूलन, जब मैं बड़ा हो गया मैं झिझकता था पिताजी से पैसे मांगने में, इसलिए जब इन्होंने कहा कि भाई तुम्हें 10,000 रुपये देंगे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी वो, तो मैंने हाँ कर दी वो अनोखी रात फिल्म के लिए। और फिल्म जब शुरू हुई तो एक हफ्ता नहीं हुआ था कि प्रोड्यूसर साहब ने डायरेक्टर साहब को कहा कि इस शख्स को निकाल दो इस फिल्म से। वो दरअसल बात ये थी कि मैं 6 साल रूस में रह के आया था, और उस ज़माने में मैं रूसी ही बोलता था, हिंदुस्तानी से वाकिफ नहीं था ज़्यादा, डायलॉग बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही थी मुझे। मैं आज तक कभी कभी अपने आप को अजनबी सा महसूस करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी के 6 साल जवानी के एक जगह में बिताना, और वो भी रूस जैसी जगह में, तो वापस लौटकर थोड़ा सा एक झटका लगता है आदमी को। और ये दादामुनि हमारे अशोक कुमार साहब भी आखिरी दम तक कहते रहे, डिलीवरी बड़ी अजीब है यार, तो गलत जगह पे पॉज लेता है, जो गलत सेंटेंस को स्ट्रेस करता है। तो उस वक्त फिर अशीत सेन साहब ने कहा प्रोड्यूसर को कि ये जिस तरह से बोल रहा है ऊट पटांग, लोगों को पसंद आएगी, इसको अभी मत निकालो। और यही हुआ। मैं तो सोचता था कि फिल्म आएगी और जाएगी और लोग भूल जाएंगे कौन हूं मैं, मगर पता नहीं सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश फिल्म बड़ी हिट हो गई, मनोखी रात।

दोस्तों, परीक्षित साहनी ने अजय साहनी के नाम से कई फिल्मों में नायक की भूमिका निभाई थी। हालांकि बचपन में भी दो तीन फिल्मों में उन्होंने बाल कलाकार की भूमिका अदा की थी, लेकिन उनके पिता महान कलाकार बलराज साहनी साहब चाहते थे कि उनका बेटा पहले तालीम हासिल करे और बाद में कुछ और बने। आपको याद होगा, राजश्री प्रोडक्शन की मशहूर फिल्म तपस्या में परीक्षित साहनी ने अभिनेत्री राखी के साथ एक बेहतरीन भूमिका अदा की थी। आइए सुनते हैं उसी फिल्म का एक गाना।

मैं उस जमाने में भी ज्यादा रुचि मेरी पेंटिंग वगैरह में थी, मैं पेंटिंग बहुत करता था, फोटोग्राफी, ये ब्रॉडकास्टिंग में बड़ी बड़ी दिलचस्पी थी मेरी। मैं मॉस्को रेडियो के लिए काफी साल काम करता रहा एज एन अनाउंसर। ये रेडियो मॉस्को है, अब आप देश विदेश के समाचार सुनिए। ये स्क्रीन कैमरे के सामने एक्टिंग करना किसी हद तक ज्यादा आसान है। पिताजी भी मेरे यही कहा करते थे, वो भी मुझे कहते थे कि बेटे मैंने एक्टिंग अगर सीखी है तो रेडियो पर सीखी है। जो मैं बीबीसी में माइक्रोफोन के सामने बैठ के एक्टिंग किया करता था वो प्लेस किया करते थे उस जमाने में, और जो उससे मेरा तलफ्फुज ठीक हुआ, उससे मैंने बोलना सीखा, उससे मेरी आवाज ठीक हुई। और ये जो स्टूडियो में बैठकर श्रोता तो हमें सुन रहे हैं सिर्फ, बहुत दूर है मुझसे, उन्हें महसूस कर रहा हूं मैं, मुझे देख नहीं सकते वो, इसलिए मैं सिर्फ अपनी आवाज के जरिए उन्हें

दोस्तों, परीक्षित साहनी ने तमाम फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं और उनके अभिनय को आपने टीवी के पर्दे पर भी कई सीरियल्स में जरूर देखा होगा। उन्होंने अपने हर किरदार को साकार किया है और हम भी उनको यही शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपनी अभिनय यात्रा को निरंतर जारी रखें और अपने चाहने वालों का दिल बहलाते रहें।

0: दोस्तों आज के फनकार थे फिल्म अभिनेता परीक्षित साहनी।
1: आज के फनकार।

आप सुन रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुई सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपके दोस्त नेहा शर्मा। आप सब मेरा प्यारा नमस्कार। और कार्यक्रम में जैसा कि आप जानते हैं रोजाना हम एक इबारत टेक्स्ट पोस्ट करते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और उसी में छिपे होते हैं वो शब्द जिनसे कार्यक्रम में शामिल होते हैं, जिनसे संबंधित जो गीत होते हैं वही हम कार्यक्रम में शामिल करें और उस टेक्स्ट या इबारत को पढ़कर आपको अंदाजा लगाना होता है कि कौन कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनसे गीत शामिल होंगे और अपनी बात भी हम तक पहुँचाते हैं कमेंट्स के जरिए। तो हमारे जो भी श्रोता हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें बता दें www.facebook.com/vbsmumbai जाकर आप ये हमारा पेज पा सकते हैं और वहाँ पर आप कोई सारी पोस्ट मिलेंगी और भी जो भी कार्यकर्ते हैं विविध भारती की उन सभी पोस्ट भी आपको वहाँ मिलती है और कार्यक्रम का विवरण भी आपको वहाँ मिलेगा झरों के अंतर्गत। तो इस तरह आप हमारे पेज से जुड़ सकते हैं और जो साथी फेसबुक पर ही हैं का अकाउंट फेसबुक पर ही सर्च कर सकते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देवनागरी में लिखा यानी हिंदी में लिखा हुआ है और आपको मिल जाएगा ये पेज। और अभी हम आपको बता देते हैं कि आज के इस कार्यक्रम की इबारत क्या है। तो की इबारत है चलते चलते जीवन में कई रास्ते खुले जाते हैं, चलते हुए हम किसी से दूर भी होते हैं और किसी के पास भी खिंच जाते हैं। हमारे पांव की सुंदरता भी तो चल जाने में है क्योंकि रुकना ही चलना ही मिलती है। अगर हम रुक जाएं या अगर हम रुके तो ये समय ही चला जाएगा। वक्त जी गया हाथ से फिर कहां कोई पाएगा। दो चार कदम आप चले और कुछ हम भी चलकर पहुंचे आप तक। देखिए चलते चलते आपकी और हमारी मुलाकात होगी इस सुली मोड़ पर। तो ये है आज की इबारत जिनसे शब्द आप सुन सकते हैं जिन आज के कार्यक्रम में गीत शामिल होंगे। अब देखते हैं कि आपकी गीतों की लिस्ट और हमारी गीतों की लिस्ट कितनी मैच करती है। हमारे साथी ने लिख भेजा है कि आज की इबारत कर शिव मंगल सिंह सुन की कविता की पंक्तियां याद आ गई। गति बल पैरों भरी फिर क्यों रहूं दूर दूर खड़ा जब आज मेरे सामने है इतना रास्ता पड़ा। जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, जीवन चलने का नाम, चल रहो सुबह शाम। ऐसे तो मैं हर रोज शाम को चलने जा रहा हूं लेकिन आज सुबह बाकार सूर से धूरा के उठ चढ़ा हूं। चलते चलते मेरे नहीं सुमन के गीत याद रखना, कभी अलविदा न कहना, ऐसा हमारे साथी का कहना है। तो हम जानना चाहते कि भी चल तो वाकई जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलना जो सांकेतिक रूप में है वो जीवन चलने का नाम जैसे तो में हमें समझ में आता ही, लेकिन पहली बार किसी को चलना सिखाना यानी किसी बच्चे जब हम चलना सिखाते हैं तो बड़ा ही प्यारा लगता है ये काम। और जब वो चलना सीख जाता है तो रुकता ही नहीं है, बहुत देर तक तो सिर्फ चलता ही रहता है। तो आपने क्या किया है ऐसा प्यारा काम, किसी छोटे बच्चे को चलना सिखाया है या आपको किसने चल सिखाया, ये भी आप हमें बता सकते हैं। और कार्यक्रम में चलते हैं पहले की ओर, बताना है फिल्म का गीत है।

पाकिजा फिल्म का ये गीत आपने सुन लता मंगेशकर की आवाज़ में, कैफी आजमी के गुलाम मोहम्मद का संगीत, और हमें बहुत से श्रोताओं ने भेजा है सही जवाब और ये भी कहा है उन लिस्ट में तो गीत था ही, और ये जानकर हमें बड़ी खुशी है कि आपके लिस्ट और हमारी लिस्ट पहले गीत में ही मिली है। आगे जरूर देखा जाएगा कि कौन कौन से गीत आपके लिस्ट से शामिल हुए हैं आज के इस कार्यक्रम में। वहीं हमारी एक साथ लिख रहे हैं कि आज का गद्यांश जी ने चलते रहने की बात दिखाया है, जीवन वास्तविक आकर्षण उसकी गतिशीलता में छिपा है, चलते रहने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी भावनाओं को दबा दें, दुख को महसूस न करें, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि हम किसी भी पड़ाव पर ठहरे नहीं, चलते रहने की सलाह में धैर्य, आशा, स्वयं पर विश्वास सबसे बड़ा संबल है, आगे बढ़ते रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है स्वीकार्यता। हमारे कौरसा ने लिखा है कि आज के सफर के मर्म को चरितार्थ करती बात है संस्कृत चरैवेति, यानी रहो श्लोक वास्तविकता रहता पा रमता।

ठह जाए तो विकार अवश्यम भी है। जीवन सफल मिलते रहने वालों की ही प्रगति पथ प्रशस्त रहती और अंततः लक्ष्य हासिल होता। वही हमारे और साथी हैं वो कह रहे हैं कि सफर जिंदगी का ये काम यूं ही चला रहा, जहाँ कुछ लोग छूट जाते हैं और कुछ के पास आ जाते हैं। कदम खूबसूरती भी ठहरने नहीं बल्कि लगातार चलते रहने में ही है। जो रुग्धम कीमत वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल जाए, जो फिर कभी उठकर नहीं आता। कुछ कदम चले, कुछ दूरी हम तय की और तरह हमारी मुलाकात हो गई। हमारे साथी का कहना है चलते रहना नियत है और गुजरा वक्त अक्सर दोबारा कभी भी नहीं मिल सकता। द्विन का कटु और शाश्वत सत्य गतिशीलता ही है। कर्मयोग काल निरंतरता और पुरुषार्थ के रूप में गहराई से समझाने की जरूरत है। दूसरे के अर्थ में जन बहती नहीं सा या किसी चक्र जैसा है, जैसा कि इन दोनों से यह ज्ञान मिल रहा है कि निरंतर गतिशील रहने में ही उनका अस्तित्व बरकरार रहता है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि चलते चलते हम ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ हमारा मन करता है कुछ देर के लिए ठहर जाए। क्या ऐसी कोई जगह या कोई ऐसा समय आपके जीवन में आया? हमें बताइए और भी बताइए कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आया जिन्हें आपको लगा कि भाई इनके साथ कुछ देर ठहर जाना चाहिए। तो आप हमें बताइए कि रुकने मन कब किया आपका। साथ ही हम नहीं रुक रहे हैं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। आपको बताना है कि किसी आवाज़ गीत कौन से फन से।

मोहम्मद रफी आवाज में सीना मान जाएगी फिका गीत सुन रहे थे और हमारे साथ कहते हैं कि गीत ही जीवन आधार है, मार्गक गति जीवन का आधार है, ठहराव तो बस एक हार है, संघर्षों से ही निखरता इस जीवन का श्रृंगार है, मंजिलें को मिलती जो कदम बढ़ाते रहते हैं, इतिहास वो लिखते हैं जो लहरों से टकराते रहते हैं।

और हमारे एक और साथी कह रहे हैं चलना ही जीवन का दूसरा नाम है। अब जब आपके कदम से दिशा में उठे तो चाहे मंजिल कितनी दूर हो आपकी निरंतर मेहनत और दिशा सच कर देती है। सफलता हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने के बजाय कितनी लगन से अपने रास्तों पर आगे बढ़ते हैं। हमारे एक और साथी लिख भेजा कल रात जिंदगी से मुलाकात हुई लब थरथरा रहे थे मगर रात हो गई उसने कहा दो कदम तुम भी लो दो कदम हम भी चले मंजिलें प्यार की होगी तय चलते चलते तुम चलो हम भी चले चली रही है जिंदगी ऐसा इन्हें लिखा। हमारे एक और साथी लिखे के सफर में चलते ही तो जाना है जीवन का नाम ही चलना है जहाँ रुके हैं सांसें रुक जाएंगी हंसते मुस्कुराते जीवन के सुख को भी चलते रहें तो जीवन में सामंजस्य ना रहेगा रुक जाना नहीं तू कहीं हार ये गीत लिखा। साथ ही बहुत सारे गीत भी इन्होंने लिखे। एक साथी लिखती हैं कि सचमुच जीवन आज फिर एक बार आपके चलने का भाव मिल गया जीवन में हर घड़ी चलते रहने बड़ा महत्व है निरंतर चलते रहने से

सारे ये गीत लिखा और साथ ही बहुत सारे गीत भी इन्होंने लिखे। एक साथी लिखती हैं कि सचमुच जीवन आज फिर एक बार आपके चलने का भाव मिल गया। सचमुच जीवन में हर घड़ी चलते रहने बड़ा महत्व है। निरंतर चलते रहने से हर मुश्किल और असफलता का डट कर सामना करना दृढ़ मनोबल पाते हैं। नई भावनाओं को अपना कर पुरानी बातें छोड़कर अपने लक्ष्य तक पहुँचाते हैं। इसी अर्थ का एक सुंदर मराठी कविता याद आ रही है, कायदा पा गति चा काल आगे लागा थांबला तो संपला धावत्याला शक्ति यही आणि रस्ता साफ पड़े। आज की बात बहुत प्रेरणा दे, जीवन चलने का नाम चलते सुबह शाम मार्गदर्शक संदेश दे रही है। हम तो साथी से कहेंगे कि जो वो दूसरी भाषा में लिख कर देते हैं कुछ कविताएं, उसका अर्थ भी जरूर लिख दें ताकि सभी पूरी तरह से समझ में आ जाए। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनाते हैं, लेकिन एक और बात हमारे साथियों ने कि चलते चलते सफलता मिलती है, चलते चलते रास्ते मिलते हैं, लेकिन ये सोचिए मान लीजिए हमें सफलता मिली और चलते चलते कहीं किस मार्ग पर कहीं रास्ते में हमें असफलता का सामना करना पड़ा तो कैसे इस स्थिति से निकल जाए। फिल्म का नाम और नायक कौन है भैया?

अनामी फिल्म का ये गीत आप सुन रही थी लता मंगेशकर की आवाज में और इस फिल्म में नजर आती है नायिका के रूप में जया भादुड़ी। आप बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे साथी कह रहे हैं वर्षा ऋतु के आगमन से श्री श्यामल बनी प्रकृति सुंदर प्रसन्न सुहे नजारे को देखकर दिल कहता है जारी रुचा। वहीं हमारे एक और साथी कहें कि जीवन पथ पर मेरी बेटी के आगमन ने जीवन सफर की दशा और दिशा बदल दी। उसकी एक मुस्कान में मानो जीवन लक्ष्य पा था। आज वो 37 साल की कार्यरत है, कल स्वयं ड्राइव कर दूर घुमाने ले गई। मेरी दैनंदिन जीवन बेटी ही है। वहीं हमारे बहुत से साथी ने बहुत सी बातें लिख भेजी है। हमारे साथियों ने कहा कि कह रहे हैं कि उन्हें चलने के महत्व बताते एक बात लिखी और कहा कि चलते रहना तो जीवन का सफर है। जिनकी तुलना हमेशा बहने वाली नदी से जाती है। नदी अविरल बहती है, समय में लहरें लगातार गतिशील रहती हैं, हवा एक पल के भी नहीं रुकी। प्रकृति का नियम है कि जो ठहर गया उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। समय और परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ना, चुनौतियों को पार करना और हर बदलाव को स्वीकार करना ही वास्तविक जीवन है। मनुष्य का जीवन भी कर्म प्रधान है। जीवन सफर में सुख धूप छांव और उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यदि हम किसी एक पड़ाव पर रुक जाए तो जीवन का असली उद्देश्य पीछे छूट जाता है। हमारे कोराथी ने बताया कि मैं रोज शाम मेरी शॉप आगे के खुले में वॉक करता हूँ। संडे की शाम मेरे घर के पास वॉक करते घूम लेता हूँ। वॉक टाइम मेरी जेब मोबाइल में विविध भारती सेवा के गीत बजते रहे हैं। तो बिल्कुल हम भी आपके साथ यानी कि वॉक कर रहे हैं, उसे भी नोट किया जाना है। जो भी इस वक्त आपके साथ हैं विविध भारती बने हुए, उन्होंने भी आपके साथ वॉक की है, ऐसा हम मानकर चलेंगे। और हमारे कोराथी ने कहा कि भाई यूं ही मिल गया था तरी राह चलते चलते। बहुत बार कुछ अनजान लोग चलते चलते मिल जाते हैं, उनके साथ चलना बड़ा सुखद होता है। ये जानते हुए कि शायद दोबारा फिर कभी उनसे मुलाकात नहीं होगी, चलते हुए अब गंतव्य तक पहुंचने में उनके साथ रहता है हमेशा याद रहता है और दिल से उनके लिए शुभकामना भी निकलती है। तो हम ये कहना चाहेंगे, आप कई बार वॉक करने जब हम जाते हैं तो बहुत से लोगों की हमारी पहचान होती है, बहुत से लोग हमें मिलते हैं, तो उनके पास जाकर कह सकता है आप। कभी कभी तो हम वॉक करने बाद बैठ कर कुछ देर बात भी कर रखते हैं और वक्त यूं गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कौन है ऐसा व्यक्ति जिसके पास जाकर आपका वक्त यूं ही गुजर जाता है, हमें बताएं। और साथ ही बताइए कि जो गीत आप सुनने वाले हैं वो किसने लिखा है।

आकाश फिल्म का गीत आपने सुना। मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजें, राजा मेहंदी अली खान बोल थे, जो सवाब हमारे एक सी ने सही दिया। चलते रहने का नाम ही जिंदगी है, मंजिल मिले या ना मिले हर कदम में कुछ नया सिखा जाती है। रास्ते चलते रहते, मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन जो मुस्कुराते हुए चलता रहता है वही जिंदगी के हर सफर को यादगार बना लेते हैं। जिंदगी ठहरने से ही चलने से महती है, हर नया कदम नई उम्मीद कराता है और हर सफर अपने बारे में कुछ ना कुछ पता है। वहीं हमारे साथी ने बताया कि मेरी बेटी ने थोड़ी देर से चलना सा था, क्योंकि वो एक भरे पूरे परिवार में पली बड़ी है, इसलिए सब उसे दिन भर गोद में ही लिए रहते थे। फिर जब मेरे पापा उसके लिए 3 पहियों वाली गाड़ी लेकर आए तो उसने चलना सीखा। यादगार दिन तस्वीर आज भी मेरे पास है। वहीं हमारे साथी ने भी कथा याद किया कि हम छोटे थे तो लकड़ी की 3 पहियों वाली गाड़ी होती थी, खरीद ली जाती थी तो कई बच्चों के काम आती थी, बाद में तरह तरह के रंग बिरंगे वॉकर आने लगे। जिंदगी किसी मंजिल का नहीं बल्कि चल रहने का नाम है, ऐसा हमारे साथी का कहना है। और हर कदम में एक नई कहानी से बताता है, हर मोड़ को नया एहसास दे जाता है। एक और साथी कहते हैं कि निरंतर चलते रहना ही जीवन की रीत है, चलते हुए ही जिंदगी में एक मोड़ आते हैं जहां से जिंदगी का फलसफा बदल जाता है। चलते जीवन के सफर में अनेक साथी मिलते हैं जो जिंदगी भर याद करते हैं या जिंदगी भर याद रहते हैं। और हमारे साथी ने बहुत से गीत लिखे हैं जिनमें से कुछ गीत तो शामिल हो गए हैं। एक और साथ कहती है कि जिंदगी सचमुच एक खूबसूरत सफर है, जहां कदम हमें नई मंजिल, नए रिश्ते और नए अनुभव ले जाते हैं। कभी चलते चलते कोई अपना मिलता है तो कभी वक्त हमें जीवन के अनमोल सबक सिखाता है। राहें बदलती रहती हैं, मोड़ आते रहते हैं, लेकिन जो मुसाफिर मुस्कुराते आगे बढ़ता रहता है वही जीवन की असली खूबसूरती को महसूस पाता है। हर मुलाकात एक नई याद बन जाता है और हर सफर में एक नई धुन छोड़ जाता है। इसलिए जीवन का संदेश यही है, रुकना नहीं, चलते रहें, क्योंकि मंजिल से अधिक खूबसूरत वो सफर होता है जो हर पल हमें कुछ सिखाता है। तो चलते रहना है, चलते चलते हमारे पांव की खूबसूरती देखना भी बहुत जरूरत है, खूबसूरती से ज्यादा मजबूती। तो किस तरह से मजबूत बनाते हैं आप अपने पैरों को, चलते चलते तो बनते ही हैं, और उनका ख्याल रखने के लिए किस तरह के जूते पल आप लेते हैं ये बताइए। कभी हम बहुत ही सुंदर दिखने वाले चप्पल जूते ले लेते हैं, उससे पांव में होती है तारीफ। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें बताइए। तब तक हम आपको बताते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हाँ बताइए किस फिल्म का है?

नमस्कार। लेने के लिए कह रहे हैं तब छोटी हाइट जिनके उन्हें हील वाले पे ले लेनी चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मुझे कभी भी जीवन का या ऐसी समस्या या बच्चों के विषय में कोई फैसला लेना होता है तो अपनी धर्मपत्नी के पास बैठता हूँ, सारी बात समझाता हूँ और साथ में दोनों अदरक इलायची वाली चाय पीते हुए सही निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। अगर धर्मपत्नी कोई सही सुझाव देती है तो मैं ही कहता हूँ कि आपके बिना मैं अधूरा हूँ। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि लाइट वेट जो जूते होते हैं वो बहुत अंदाते हैं। एक और साथी ने कहा कि सुबह 3 किलोमीटर पैदल घूमने जाते हैं और आते हैं, शाम को साइकिल में ही इतना ही घूम आते हैं। भाई हमारे श्रोताओं सेहत का राज तो आज खुल रहा है कि वो बताएं कि कितनी वॉक कौन कर रहा है और सारे के सारे श्रोता वॉक करने पर जा रहे हैं, कोई साइकिल चला रहा है, कोई दौड़ने जा रहा है। भाई वाह, हमें तो आपसे सीख लेनी चाहिए। हमारे एक और साथी कहें कि बिल्कुल वॉक करने से ही बहुत से लोगों से जान पहचान हो गई है, बहुत ज्यादा किसी के बारे में जान पहचान नहीं है, लेकिन हम टहलने के बाद कुछ बैठकर खाना बनाना, सब्जियों के भाव, घुटनों और पैर के दर्द के बारे में और भी कुछ बातें करते हैं, फिर ताजी स्फूर्ति और ऊर्जा के साथ अपने अपने घर लौट आते हैं। हमें तो पूरा यकीन है कि जिस दर्द की बातें होती होंगी उसकी दवा भी समझ आती होगी, बहुत से लोग सुझाव भी दे होंगे। हमारे और साथी का कहना है कि सुखी वॉक सिर्फ सेहत ही नहीं, नए रिश्तों, नई मुस्कानों का भी जरिया बन जाती है। राह चले जब नए लोग मिलते हैं, कुछ पल की बातचीत भी दिन को खुशनुमा बना देती है, कभी अनजान चेहरे भी जीवन में अपनापन और नई सकारात्मक ऊर्जा बचाते हैं। एक और साथी का कहना है कि मैं प्रतिदिन सुबह 1 से 2 घंटे तक हमारी टीम के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। खेल पूरा होने के बाद हमारी टीम के कुछ खिलाड़ी रुकते हैं तो उनके साथ बातें करते वक्त कहाँ कट जाता है पता नहीं चलता। तो इस तरह से हमारे साथी खेल से या फिर वॉक से सेहत से जुड़े हैं, ये बड़ी अच्छी बात है और आप हमें प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि भाई समय तो बीत ही जाता है और समय पर किया गया ही काम भी काम आता है। इस मुझे लगता है सही काम ये है कि गीत सुना देते हैं। बताइए किसकी आवाज में गीत है।

सक्सेसफुल फिल्म का गीत आप सुना किशोर कुमार की आवाज में, गुलजार के राहुल देव बन का संगीत अपने आवाज बिल्कुल सही जानी। हमारे एक साथी ने बताया कि माँ शारदा शक्तिपीठ में गया था, वहाँ लगभग 1000 सीढ़ी चढ़ते चढ़ते बहुत गया था। वही और साथी कहना है कि मैं अपनी मॉर्निंग वॉक साइकिलिंग से शुरू करते हैं, मॉर्निंग करते हैं काफी लंबे समय तक। अब रिटायर बैंकर हैं, 69 ईयर हैं और उन्हें हमें अच्छा लगे करना। वही मक साथी का कहना है कि उन्हें 6000 स्टेप का एक बंधन रखा हुआ है। हमारे और साथी जो हैं वो बता रहे हैं सब अपने अपनी व्यायाम की बात करने लगे हैं अब तो। हमें लगा भाई आप इतनी अच्छे से चलते फिर रहते हैं और वॉक करते हैं, वॉक करते हैं, ये सारी बातें हमारे साथ बताने लगे और स्वस्थ रहने के नुस्खे भी आने लगे हैं। अब हमें पता लगे कि आप जीवन इतना आनंदमय कह रहता है, किस तरह से इतने अच्छे अच्छे कम साफ करते हैं, क्योंकि सुबह जब आप चलते हैं जाते हैं कहीं घूम कर आते हैं तो आपके मन में एक अलग सी ऊर्जा रहती है, अलग सी सकारात्मकता रहती है जो हमें आपके कमेंट्स के जरिए मिलती है। हमारे साथी ने कि चलते चलते जीवन बहुत कुछ आ जाता है, अच्छे लगे वो ग्राह में मिलते हैं, कुछ बिछड़ जाते हैं, कोई याद बनकर दिल में बसते हैं। सफर चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, हर मोड़ पर कोई एहसास हमारा हम सफर बन जाता है। ऐसे हमारे साथी का कहना है भाई मैं तो सारे चलती रहती हूँ और घर में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, रेडियो में गाने चलते रहते हैं और मेरा हाथ बराबर चलता रहता है, कुछ करते हुए उनका हाथ काम में लगा रहता है। हमारे एक साथी ने बताया कि मेरी बेटी पूना में रही थी, जाते ट्रेन के लड़के से उसकी मुलाकात हो गई, हम लोग को बताया वो क्यों ही ट्रेन में मिलते रहते और उन्होंने शादी करने का निश्चय लिया। हम लोगों के लाख विरोध के बाद भी शादी होगी, दामाद बहुत ही अच्छा और शरीफ है। तो इस तरह से जो ट्रेन में हम सफर मिला वो जीवन में सफर बन गया, बहुत ही अच्छी बात। हमारे एक और साथी कह रहे कि हम प्रतिदिन कम से कम 5-8 किलोमीटर वॉक करते हैं, सुबह 5 से 8 बजे तक 5 तो कम से चलते हैं। और एक साथी कहने की सुबह योग और रात को खाने के टहलने चाहते हैं। हमारे एक साथ बताया कि कनाडा में नायगरा फॉल देखे समय उनसा लगा कि का दिल कह रहा था कि वापस ही नहीं आना है, वहीं जाएं। हमारे और साथी कह रहे हैं कि पैरों हाई हील सैंडल किस उम्र तक पहननी चाहिए महिला को, भाई ये सवाल तो किसी भी महिला के लिए पूरी तरह से नहीं बताया जाता, क्योंकि जिसकी जितनी भी श्रद्धभक्ति हो सकते हैं या कहें कि जिसके पैर जितनी इजाजत दे जो अपने पैरों को तरह से संभाल सके वो उम्र का तो इसमें सीमा रही नहीं, आप अपनी मर्जी से पहन सकते हैं। हमारे साथ कहा कि मैंने ताजमहल 15 बार देखा है तो अब तो आपको पूरा याद हो गया होगा ताजमहल की जाने से क्या होता है। वही हमारे और साथी कह रहे हैं कि ये जिंदगी अजीब है, मंजा लालच देती है और सारी उम्र इंसान को सपने रखती है। हमारे और साथी कह रहे हैं कि गुरुजी के आश्रम में जाते हैं, वातावरण में ऐसी स्थिति होती है कि कुछ देर वापस लौटने का मन ही करता। एक साथी ने कहा कि उन्हें एक गाना मेरे दिल के बहुत करीब है और आप पूछा कि किसी के साथ रहने से अगर ठहर जाए गाना जब आता है तो मुझे मेरे पति जो इस दुनिया में नहीं है उनकी याद आती है और मेरे वो ये गाना हमेशा गाते। बहुत अच्छी बात है कि आप इस गीत के लिए उनकी याद एक बार हमने दिल। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नाना नानी जब आते कुछ दिन थे और फिर जब वो जाने लगे तो हम बच्चे थे, अगले दिन जब हम लोग स्कूल जाते अब वो चुपके से जाते थे। अरे बताइए कि नाना नानी जाने से ऑलमोस्ट रुआ करते थे क्योंकि साथ जाने का मन था या एक अलग ही प्रेम जुड़ता था, लेकिन ये बताइए कि स्कूल जाने के लिए लोग रोते थे।

घर इस फिल्म गीत आप सुन रहे थे गुलजार के बोल और यही हमारे सवाल का ही जवाब जो आपने भी दिया। हमारे एक साथी कहने कि मेरे बचपन से खास थी कि गोंडा हैदराबाद किला देखूं और वो इच्छा पूरी हुई। वहाँ पर पहाड़ बहुत ऊंचा, उस पर चलना आसान नहीं था, लेकिन मैं गया और प्राचीन कला को देखकर आनंद आया। वही हमारे एक साथी का कहना कि 11 गीत की लिखी भारत में 9वां और 11वें नंबर लिखा गीत शामिल हुआ। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो स्कूल जाना बड़ा अच्छा लगता, नहीं रोए कभी भी। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बहुत सरल सरल सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि कुछ हार्ड सवाल पूछें, सरल सवाल में इतना मजा नहीं आता। तो बिल्कुल आप बताइए कि कौन सा मुश्किल सवाल होना चाहिए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि एक बार जब हम सब छोटे

राजस्थान मामा जी के वहाँ में कार्यक्रम में गए थे, तब माता चौमुंडा देवी के मंदिर के दर्शन के लिए गए। मंदिर इतना ऊंचा है, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बूढ़े तो थक गए, हम बच्चों को बड़ा मजा आ रहा था। एक और साथ कहती हैं कि मैं वो स्कूल थी, चाहे बारिश हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, फुल अटेंडेंस हुई थी मेरी। हमारी और साथी कह रही, पैरों में तकलीफ होने के बावजूद तो चलते रहे, सलाह दे हैं, एक लोहे की मशीन अगर बहुत दिन तक चलाई न जाए तो मैं जंग लगती है। इसी प्रकार यदि मनुष्य रुका तो धीरे धीरे पैर हड्डियां जाम होने लगती है, इससे थोड़ा बहुत चलते रहना चाहिए। कुछ सही सलाह आपने। हमारे और साथी कह की उनके बचपन से हसरत घूमने जाने की, तो पढ़ ली। हमारे और साथी कहने की मसूर यात्रा के दौरान मैं लैंडोर तक करीब 11 किलोमीटर के पैदल आई की। जब मैं वहाँ लैंडोर बेक हाउस पहुंची तो उसके मशहूर केक खाया, स्वाद आज तक मुंह में सा हुआ है। एक बात ही कहने की, मैंने मेरी दी की छोटी सखी को बहुत चलाया जब वो एक दो साल की थी। हमने किसके चलना सिखाया, हमारे चलते बोलते रहने की तब की गुरु तब माँ ही थी। माँ ने उंगड़ कड़ करना सिखाया, जब से अचानक उठने की कोशिश करने लगते हैं तो उनको ये समझ जाता है कि वो चलना चाहिए और धीरे धीरे उन्हें पकड़ चलना सिखाती है। एक साथी कह रहे हैं कि समय और बादल के अलावा कोई ईमानदारी से नहीं चलता। और हमारे साथी कह रहे हैं कि हम जीवन और उसके अंतर हमें निरंतर सक्रिय रहने चल फिरते रहना जरूरी है। तो चलते चलते रहने के बहुत से गीत हैं, कुछ याद आ रहे हैं, इन गीतों के नाम लिख भेजें, हमें पूरी उम्मीद है उसमें कुछ गीत तो शामिल हो ही गए। कार्यक्रम का अंतिम गीत हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत, किसकी आवाज़।

चलते चलते फिल्म से शुरू कुमार आप सुन रहे थे हम अलविदा नहीं कहे, हालांकि वक्त हो गया है लेकिन विभार्दी का सुरीला सफर रहता है आपके साथ दिन रात लगातार। इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत।

0: त्रिवेणी श्रोताओं को नमस्कार। आज की त्रिवेणी रिश्ते नातों पर आधारित है। दोस्तों, रिश्ते नातों के ना परिवार समाज की कल्पना नहीं कर सकते। हर व्यक्ति का व्यक्ति कोई ना कोई रिश्ता जुड़ जाता है जब उनकी मुलाकात होती है। जब बच्चा परिवार में जन्म लेता है, पहला रिश्ता माता से, पिता से, उसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों से जुड़ता है। दादी, बाबा, चाचा, चाची, नानी, नाना, मामा, मौसी, बुआ, भाई, बहन, सब रिश्ते करीब आ जाते हैं, जिनसे मिलता है पार, ममता, प्यार और दुलार। ये रिश्ते नाते विश्वास, प्यार, व्यवहार, सुरक्षा, भरोसे निखरते हैं। इनमें सच्चा का होना बहुत जरूरी है। बिन किसी भेदभाव के अपना पराया जैसी भावनाओं से परे मानसिकता का स्पष्ट होना आवश्यक है। इनमें मिलना, मिलाना, आदर, सम्मान होना बहुत जरूरी। आपसी बातचीत, संवाद, संतोष, डर भी हो आपस में।
1: तेरा मुझसे

बिहा है कि रमन धागा प्रेम का मत तोड़ चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े वे गांठ पर जाए। रिश्तों में प्यार का होना बहुत जरूरी है, इन्हें मतभेद हो जाए तो दूरियां बढ़ जाती हैं। ये रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, बड़ों तक के रिश्ते नाते फलते रहा करते, तब संयुक्त परिवार हुआ करते थे। बच्चे परिवार में कैसे बड़े हो जाते थे पता ही नहीं चला था, आज एक परिवार गए हैं, बच्चों की संख्या भी कम हो गई है। ये रिश्ते नाते माँ चाचा भाई बहन मौसी माँ सब खत्म हो जा रहे हैं। रिश्ते रौनक त्योहार उत्सव और मांगलिक कार्यों में बड़ी अच्छी लग है, आज इन्हें भी कमी आ गई है, या सब अपने आप में इतने व्यस्त होते जा रहे हैं कि शामिल होने में समर्थता दिखा

दोस्तों आजकल रिश्ते नाते डिजिटल हो गए हैं। फोन, वीडियो कॉल्स या मैसेज से बधाई, संदेश, संवेदना प्रकट करना बस दे दिया, उनका ये फर्ज हो गया। इन कितना अपन होता है या सिर्फ खाना पूर्ति, ये हम सब अच्छी तरह से समझते हैं। जो पहले रिश्ते नातों का आपस में एक दूसरे से आना जाना होता था, मिलकर रसोई बनाना, एक साथ खाना, कितनी गप्पे मारना, सुख दुख में शामिल होना परिवार को ताकत जाता था कि एक आवाज पर एक आर टेलीग्राम चिट्ठी में सब जाएंगे, आज में भी कम आ गई है। लोग रिश्ते अब दिल से नहीं जरूरत से बने लगे हैं। कहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन वे तब तक आपके साथ हैं जब तक उन्हें बदले में कुछ मिले। वक्त के बदलते दौर में हम मिलकर इन्हें संभालना होगा। रिश्तों में फिर से मुलाकातों का, संवाद का दौर लाना होगा। रिश्तों की मीठी यादों को साझा करें, वे फिर से लौट आएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और

पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जुड़े। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी की में रूस बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की

0: और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी की में रूस बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबो सुबियांतो के साथ वार्ता करें और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाए। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर विदेश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक रामबनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष अमीशा।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर क्षेत्र तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल

0: काम हमें किया है।
1: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तक कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि मंत्र का पालन कर रहा है, जिस मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को अधिक पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
0: हमने कृषि, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सब

0: समीक्षा।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गए। किस बैठक आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आधार से जुड़े हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जुड़ी है। एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है।

0: नेटवर्क माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ते हैं। सरकार लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपक कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा UG 2026 की आवेदन फीस वापस के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,59,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंचपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्र की जांच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र शेखर राय, सुचेता देव और प्रकाश चिकबाई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी, मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उसी दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन चरण ने सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था निश्चित करने का निर्देश दिया है।
2: दुनिया भर में मशहूर पुरी के रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी इस उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। जैसा की मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया। भीड़ प्रबंधन, कई करो वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
3: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई और आने वाले समय में केरल में ओणम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से आवश्यक यात्रा से बचने की अपील की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SERF स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। वही बृहद नगर पालिका की महापौर ऋतु रावरे ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी की है।
4: बहुत ही बड़ी बारिश और उस साथ में हवा का वेग है और उसी के साथ में समुद्र में जो हाइटेड चल रही है, ये तीनों वजह से रेड अलर्ट लोगों दिया जा रहा है। आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में वही का काम कर रहे हैं। 191 की नंबर है, उसको कार्यान्वित किए।
1: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटे में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिस सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख आंधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंगलवारों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में

0: भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले तीन दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्व उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोडोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस भी हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में दो दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्य के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया, क्वार्टर फाइनल जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड सोलह में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेस्ट में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियोली को हराकर पुरुष सिंगल क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने और इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियास में या एलेक्सेंड्रो डेविडोविच फोकना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोव ने अपने करियर में तीसरी बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले इंडो प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य का आभा से जोड़े गए। मुंबई तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांच मुकाबले में 3-2 से आकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इस साथ ही पहले समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है।

0: टैक्सी ड्राइवर फिल्म का गीत आप सुनते तलत महमूद की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल सचिन बर्मन का गीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से समर्थ है, ऐसे ही फिल्मी गीत की किस्मत चमकती है कहानी वाले के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरी गैरों में। ऐसी नया गीतों का कार्यक्रम
3: अनमोल याद,
1: जिन्हें माने पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
3: अनमोल यादें।
1: सुन भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सूर्य धड़कन विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाहार नकली।

पारस मणि फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें, फारूक सर के बुल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं हाफ टिकट फिल्म से एक गीत, किशोर कुमार की आवाज़, शैलेंद्र के बोल, सर चौधरी का संगीत।

0: सवनिया ओए आके सीरी लग दिल पे से कटरिया ओ सवनिया ओए ओए तेरी तीन नजरिया
1: ल गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आखिरी भी लगी दिल पे से करिया ओ सवरिया।

0: तो अंधीन गाहूंगी डोर हमसे कहती हो चल पीठ छोड़ोगी और नटखट और खटपट पनघट झटपट ले तो बांधी निगाहों की डोर अब हमसे कहती चल पीठ छोड़
1: अरे ना हम मीठे ना अरे ना हाय हाय मीठे बहना।

0: गुजरिया ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
2: ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
2: ओ सवरिया।
3: विविध भती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक निशंकर जी, आपसे सह करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ये कहीं न कहीं अपनी भाषा में इनका प्रयोग करता था, हास्य भी अंदर था और बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से व्यंग निकते थे किस मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो भाषा व्यंग बोल लेते हैं, ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल के मेरी प्रमुखता होगी।
3: तो सुनना न भूल कार्यक्रम आपके मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सदाबहार में।

आशिक फिल्म से गीत सुन रहे थे मुकेश और साथियों की आवाजें, चंद्र के बोल, शंकर किशन का संगीत। कार्यक्रम सदा नकमे में अब आपको अंतिम गीत सुनवाते हैं शमशाद बेग और उषा मंगेशकर की आवाज़ें। ब्लम मास्टर फिर ये गीत सुनिए जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, कल्याण जी आजी का संगीत। और इसके साथ निहाशर को दीजिए इजाजत, विविधता का सूर्य सफर जारी रहेगा।

0: यही इस कहानी भी परिलक्षित होते है। मुंशी प्रेमचंद की स्पष्ट धारणा है कि साहित्यकार को मानवीय स्वभाव की ज्वलताओं को दिखाने वाला होना चाहिए। यही इस कहानी का मर्म भी है। भाव और पात्र के अनुकूल भाषा का सफल प्रयोग इस कहानी की विशेषता है। अत्यंत मार्मिक और हृदय को छूने वाली कहानी है दो बहनें। इसमें प्रेरणा देने की शक्ति साथ साथ पाठक को चिंता में लीन करने की भी अद्भुत क्षमता है। तो आइए सुनते हैं कथाधा में मुंशी प्रेमचंद कहानी दो बहने, जिस कहानी की पहली कड़ी।
1: दो बहने दो साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब रो धोकर खामोश हुई तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खिल गया, मिजाज में कुछ तमकता आ गई और बातचीत करने कुछ ज्यादा मुश्ताक हो गई है। बेकीमत साड़ी और बेलदार उन्नाबी मखमल के जम्पर ने उसके हुस्न को और भी चमका दिया है। वही रंदुलारी जो लड़कपन में सर के बाल खोले फूहड़ थी इधर उधर खेला करती थी। आखिरी बार रूपारी ने उसे उसकी शान में देखा। दो साल कबल तक भी उसकी शक्ल और सूट में कुछ ज्यादा गयूर हुआ था। लंबी तो हो गई थी मगर उतनी ही दुबली, उतनी ही जर्दरू और उतनी ही बदतमीज, जरा जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो कुछ हालत ही और थी, जैसे कली खिली हो और हुस्न उसे कहां पा रखा था।
2: नहीं नहीं, नजरों को धोखा हो रहा है, ये हुस्न नहीं महज दीदा देवी है। रेशम मखल और सोने की बदौलत नक्शा तो ही बदल जाएगा, फिर भी वो आंखों में माई जाती है। 50 औरतें चाहें अगर ये कशिश और किसी में नहीं।
1: कहीं आना मिलता तो वो जरा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते वक्त उसने अपनी सूरत देखी थी, उसे चमकाने की जितना साइकिल कर सकती थी वो किया था। लेकिन अब वो सूरत जैसे याददाश्त से मिट गई है, उसकी महक धुंधली सी परछाई जहन में है। उस फिर से देने के लिए वो बेकरार हो रही है। यूं उसके साथ मेकअप के लवाजमात साथ आईना भी है, लेकिन उस मजे में वो आईना देखने या बन सिंगार करने की आद नहीं है। ये औरतें दिल में खुदा जाने क्या समझे, यहाँ कोई आईना तो होगा ही, ड्राइंग रूम में तो जरूर हुआ। वो उठकर ड्राइंग रूम में गई और कदे आदम शीशा में अपनी सूरत देखी कि खद हाल बेएब हैं, मगर वो ताजगी में वो शगुफ्तगी वो जर फरेबी नहीं है। रामदारिया चुली है और उसे खुले जमना हो गया। इस ख्याल से उसे तस्कीन नहीं हुई, वो रामदारी से हेटी बनकर नहीं रह सकती।
2: ये मर्द भी कितने अहमक होते हैं कि मैं असली हुस्न की परख, उन्हें जवानी शोखी और नफात चाहिए बस। आंखें रख कर भी अंधे बंदे हैं। मेरे कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर फिर देखो ये सारा आजाद कहां हो गया है। चुड़ैल सी नजर आए, अब इन अहमकों को कौन समझे। राम दुला के घर वाले तो इतने खुशहाल थे, वो शादी में जो जोड़े और जेवर आए थे वो भी बहुत शिकन थे। उनके ससुर एक रियासत के मुख्तार राम थे और शौहर कॉलेज में पढ़ता था। इस तो साल में कैसे हुन बरस गया, कौन जाने जेवर किसे मांग कर आई हो, कभी भी दो चार दिन के लिए मांग लिए हो। उसे ये सांग मुबारक है, मैं जैसी हूँ वैसी ही आती हूँ। अब अपनी हैसियत को बढ़ाकर दिखाने का मर्ज कितना बढ़ता जाता है।

घर में रोटियों का ठिकाना नहीं है, लेकिन इस तरह बनठन निकलेंगी गोया कहीं राजकुमारी है। दातियों के, दर्जियों के और बजाज के ताजे सहेंगे, शहर की क्या खाएंगे रोए रूठे, मगर मगर मेश के जुनून को नहीं रोक सके। घर वाले भी सोते होंगे, कितनी छिछोरी तबीयत इसकी, मगर यहाँ तो बेहयाई पर कमर बांधे। कोई कितना हंसे बिया के बला दूर, तू तो बस ही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाए और उसकी खूब तारीफें की जाए। राम दुलारी ने जरूर जरूर किसी से जेवर और कपड़े मांग लिए हैं, जानती हूँ ये शर्म।

0: उसकी खूब तारीफें की जाए। राम दुलारी ने जरूर जरूर किसी से जेवर और कपड़े मांग लिए हैं। जानती हूँ ये शर्म जाए।
1: उसके चेहरे पर गुर की सुखी झलक पड़ी। ना सही के पास जेवर और कपड़े, किसी के सामने शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ता। एक एक लाख के तो उसके दो लड़के हैं, भगवान उन्हें जिंदा सलामत रखे। वो इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से तो जिंदगी का मकसद पूरा नहीं हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं, पर इज्जत तो है। किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी का बद्दुआ तो नहीं लेते। इस तरह अपना दिल मजबूत करके वो फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे रहम की आंखों से देख कर कहा,
2: जीजा जी की कुछ तरक्की बरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 पर कलम घिस रहे हैं?
1: रूप कुमारी के बदन में आग सी लग गई। उफ़ोरे दिमाग, गोया उसका शौहर लाठ ही तो है। अकड़ कर बोली,
0: हाँ तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है। आजकल ये भी गनीमत है, मैं तो अच्छे एमए पासों को देखती हूँ कि कोई टके को नहीं पूछता। और तेरा शौहर, तेरा शौहर अब बीए में होगा? हा?
2: नहीं, उन्होंने तो पढ़ छोड़ दिया बहन। पढ़कर औकात खर्च करना था और क्या, एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं। अब 250 रुपया माहवार कमाते हैं, कमीशन ऊपर से 500 रुपया रोज सफर खर्च के भी मिलते हैं। अब ये समझ लो 500 का औसत पड़ जाता है। 150 रुपया माहवार तो उनका जाती खर्च है। बहन ऊंचे होते हैं तो अच्छी हैसियत बनाए रखनी लाजिमी है ना?
0: वो तो है भाई।
2: 350 रुपया बेदाग घर देते हैं, उसमें 100 रुपए मुझे मिल जाते हैं। 250 में घर का खर्च खुशफी से चल जाए। अब एमए पास करके भला क्या करते।
1: रूप कुमारी से एक चिल्ली की दास्तान से ज्यादा वक्त नहीं देना चाहती थी, मगर राम दुलारी के लहजे में इतनी सदाकत है कि चेहरे पर शिकस्त की बदमजगी साफ झलक रही है। मगर उसने होशो हवास को कायम रखना है तो इस असर को दिल से मिटा देना पड़ेगा। उसे जिरहों से अपने दिल को यक करा देना पड़ेगा कि इसमें चौथाई से ज्यादा हकीकत नहीं है। वहां तक तो बर्दाश्त करेगी, इससे ज्यादा कैसे बर्दाश्त कर सकती है। इसके साथ उसके दिल में धन भी है, और ये रात सच निकली तो कैसे दुलारी को मुंह दे सकेगी। उसे अंदेशा है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू निकल गए। उसने तमस्खुर के अंदाज से पूछा,
0: जब एजेंसी में इतनी तनख्वाह भत्ते मिलते हैं तो ये तमाम कॉलेज बंद क्यों नहीं होते? भला बताओ जरा, हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं?
1: रालारी बहन की खिफत का मजा उठाते हुए बोली,
2: बहन तुम यहाँ गलती कर रही हो। एमए तो सभी पास हो सकते हैं।
0: अच्छा,
2: मगर एजेंट करना किसको आता है भला? ये तो बहुत हुनर काम है, कोई जिंदगी भर पढ़ता है, अगर जरूरी नहीं कि वो अच्छा एजेंट हो जाए। रुपया पैदा करना दूसरी चीज है, इली फजीलत हासिल करना दूसरी चीज है। अपने माल की खूबी का यकीन पैदा कर देना या जहन नशीन करा देना कि इसे तो बेहतर और देरपा चीज बाजार में मिल ही नहीं सकती, आसान काम नहीं है।
0: वो तो है भाई,
2: एक से एक ग्राहकों से उनका साबिका पड़ता है। बड़े बड़े राजाओं और रईसों की ताली कल भी करनी पड़ती है, और तो उन राजाओं और नवाबों के सामने आने की हिम्मत भी न पड़े और किसी तरह पहुंचाए तो सामने निकले। शुरू शुरू में उन्हें भी झिझक हुई थी बहन, मगर अब तो इस दरिया के मगर है, अगर अगले साल तरक्की भी होने वाली है।
0: सही कहती हूँ।
1: रूप कुमारी की रग में जैसे खून की रकत बही जा रही है।
0: जालिम आसमान क्यों नहीं गिरता, रहम ज़मीन क्यों नहीं हट जाती? ये कहाँ का इंसाफ है कि मैं जो हसीन हूँ, तमीज़दार हूँ, किफायत शियार हूँ, अपने शौहर जान देती हूँ

0: बच्चों को जान से अजीज समझती हूँ। खस्ता हाली में बसर हो रही है, और ये बदमीज तन परवर चंचल छोकर रानी गई है। लेकिन इनको तो उम्मीद है, बाकी शायद भी तस्कीन कल्ब का कोई रास्ता निकला है।
1: उसी तमस्खुर के अंदाज से बोल,
0: तब तो शायद 1000 मिलने लगेंगे। हाँ,
2: 1000 तो नहीं, मगर 600 में शुभा नहीं।
0: हाँ, ऐसे ही कोई आँख का अंधा मालिक बन गया होगा।
2: बहन, व्यापारी आँख के अंधे नहीं होते। हाँ, जब तुम ये 6000 कमा कर दो ना, तब 600 मिले। जो सारी दुनिया को चराए उसे कोई क्या रुकूफ बनेगा भला।
1: तमस्खुर से काम न चलते दिख रूप कुमारी ने तहकीर शुरू की।
0: हाँ, मैं उसको बहुत मज़ज पेश नहीं समझी। सारे दिन झूठ के तोमार बांधो, क्या ये ठीक विद्या है?
2: अरे, तरह तो जने वकील बैरिस्टर है, सभी गलत करते हैं। अब मुवक्किल फायदे के उन झूठी शादी तक बनानी पड़ती है। मगर उन्हीं वकीलों को हम अपना लीडर कहते हैं, उन्हें अपने कौमी सभाओं का सदर बनाते हैं, कि गाड़ियां खींचते हैं और फूल बरसाते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है, पैसा। पैसे कैसे आए ये कोई देखता? जिसके पास पैसा हो उसकी पूजा होती है। जो बदनसीब हैं, नाकाबिल हैं, मस्त हिम्मत हैं, वो जमीर और अखलाक की दुआई देकर अपने आंसू पोंछ लेते हैं। वरना जमीर और अखलाक को भला कौन पूछता है?
1: रूप कुमारी खामोश हो गई। अब हकीकत उसकी सारी तलखियों के साथ असलीम करनी पड़ेगी कि हम दुलारी उससे ज्यादा खुशनसीब है, इससे मुजीर नहीं। तमखुर या तहकीर से वो अपनी तंगदिली के इजहार के सिवा किसी नीजे पर न पहुंच सकती। उसे बहाने से रामदुलारी के घर जाकर असलियत छानबीन करनी पड़ेगी। रामदुलारी वाकई लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो वो अपनी किस्मत को ठोक कर बैठेगी। समझ ले कि दुनिया में कहीं इंसाफ नहीं है, कहीं ईमानदारी की कदर नहीं है।
3: कथसुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। आज आपने सुनी पहली कड़ी। पात्र परिचय इस प्रकार है: रूप कुमारी, रेणु चतुर्वेदी, राम दुलारी, ममता सिंह, सूत्रधार जी श्याम, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशक रेणु चतुर्वेदी। आज आप इस कहानी पहली कड़ी सुनी। आगे ये कहानी क्या मोड़ लेती है जानने के लिए अगले हफ्ते जरूर सुनिएगा कथा सुधा।
4: इस कहानी के भाव में तो हम भी गए थे साथियों, आपके साथ।
5: बिल्कुल,
4: चलिए सुनते हैं गीत।

0: भागती दौड़ जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर।
1: जब पेट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी आईबीएफ हम लोग नहीं कर सकते, हम नेचुरल से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए कंसीव के वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लैट्रोस देते हैं, लेट्रोल और मल्टीविटामिन, विटामिन डी 3, ओमेगा 3 और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, बिटवेल, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और अब ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: अगर थोड़ा सा आपस में अभी जो विचार विमर्श कर रहे हैं और जो बहुत सारे संदेश आए हैं, तो हम कुछ जानेंगे आसान बदलाव के बारे में कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं, आपको क्या सही लग क्या गलत वो जरूर बताते चलिएगा।
1: बिल्कुल, और अक्सर लोग ये तय नहीं कर पाते कि उनकी आय कितना हिस्सा कहाँ छोना चाहिए। और अब देखिए ना, कुछ खर्चे बिल्कुल निश्चित होते हैं कि जैसे मकान का किराया, राशन की खरीदारी करनी, पेट्रोल भराना है, बिजली पानी वगैरह वगैरह, जैसे भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, घर में दूध का बिल लेना है, तो बच्चों की फीस जमा करनी है, इन सब खर्चों के लिए पहले ही राशि तय करने से कर लेने से क्या होता है कि फिजूल खर्च से हम बच सकते हैं। यानी जब आप से लेकर आए तो एक एक छोटे छोटे बॉक्स बना लें, उसमें सबके हिस्से के पैसे डाल दें,
0: इस तरह से भी कर सकते हैं। और कई बार ये भी देखने में आता है कि बहुत सारे लोग महीने की शुरुआत में खुलकर खर्च कर देते, फिर जनाब नतीजा तो तय ही होता है ना कि आखिरी दिनों में आर्थिक जो एक टेंशन सी आ जाती है वो बढ़ने जाती है। इसलिए जरूरी खर्चों के बाद बचे रकम को पूरे महीने के हिसाब से अलग अलग हिस्से में बांटकर देखना चाहिए, जैसे अभी आप बता रही, तो वैसे भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 से 10 तारीख का खर्च अलग दो, 11 से 20 का अलग रख लीजिए, और फिर 1 से 30 का खर्च आप अलग अलग सेगमेंट बना के अलग अलग
1: रख सकते,
0: ये भी करके हम देख सकते हैं।
1: बिल्कुल, और अक्सर दीपा हम लोग यही सोचते हैं कि महीने के अंत में जो बचेगा उसे बचत में डाल देंगे, लेकिन क्या होता है ऐसा होता नहीं है और पता ही नहीं चलता है कि मतलब सैलरी में ही 20-30% राशि बचत के लिए जो हमने रखी है या नहीं रख पाए हैं वो कहाँ चली गई, खर्च होते ही चले जा रहे हैं। तो हमें बचत के लिए भी सोचना पड़ता है, और सच में ये बचत आने वाले दिनों में आर्थिक सुरक्षा आधार बनाती जो हम कटौती करते हैं। और दीपा एक और रास्ता है, आप एक कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए खर्चे को,
0: बिल्कुल,
1: तो आप अगले महीने सोचिए कि हमने कहाँ पे खर्चा ज्यादा किया, तो उस चीज को फिर अगले महीने आप बजट से टा सकते हैं, ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है।
0: बिल्कुल, और इसी तरह से एक इमरजेंसी फंड भी हम जरूर रखना चाहिए हमें, जैसे बीमारी हो गई, नौकरी में बदलाव हो गया, इस तरह कोई परिस्थिति अगर बन जाती है तो बिना तैयारी के जो ये आर्थिक दबाव आता है, ऐसे में 3 से 6 महीने का खर्च के बराबर का एक इमरजेंसी फंड अगर हम रखें ना अलग से, बहुत मुश्किल है, बिना आसान होता है करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा जाकर के कुछ ऐसा करने की 3-1 महीने की सैलरी जितना पैसा अगर हमारा अलग से रखा हुआ है, तो कभी भी अचानक कुछ अगर इमरजेंसी आ गई तो हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि अरे क्या करें और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किससे मदद मांगे, किसको बोले कि हमें थोड़ा सा पैसे की जरूरत है, तो आप प्लीज हमें कुछ हेल्प करेंगे क्या, तो इस तरह की स्थिति हमारे सामने आने से हम बच जाएंगे।
1: और दीपा देखो, पहले के समय में ऐसा होता था, महिलाएं जो है दादी नानी का लोग, इनको देखो तुम अलमारी के पेपर पीछे पैसे रख देती थी, अपनी साड़ी के फलाने साड़ी पल्लू में बांध के रख दिए, या अलमारी के अंदर उन्होंने एक छोटी सी डिब्बा रख दी, तो वो हर जगह थोड़े थोड़े पैसे रखती थी और मुसीबत के समय वही पैसे उनके काम आते थे। तो उससे बचत करने से काम नहीं चलता है दोस्तों, थोड़ा सा निवेश भी होता रहना चाहिए, इसलिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा निवेश करने की आदत जरूर बनाएं, फिर वो चाहे महीने के 1,000 या 2,000 पैकेज से ही शुरुआत क्यों ना हो शुरू किया जाए। और आप गुल्लक भी बना सकते हैं, अपनी गुल्लक भी बनाइए, बच्चों की, हस्बैंड की भी, और सबसे बोलिए इसमें सब लोग पैसे बचाइए, तो आप इस तरह से भी पैसे बचा सकते हैं।
0: बिल्कुल, और आप अपने लिए कुछ ऐसे दिन भी चुन सकते हैं जहाँ हम सिर्फ जरूरी चीजों की खरीदारी करेंगे और फिजूल खर्च बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे महीने के 3-4 दिन भी अगर ऐसे आ गए तो आप देखिए थोड़ा पैसा तो हमारे पास बच जाएगा। एक और तरीका भी हो सकता है कि 24 घंटे का नियम बना लें, यानी कि कभी भी ऑनलाइन कोई लग्जरी आइटम या ऐसी कोई चीज जो कि आप बहुत दिन सोच रहे हैं हमें लेना है, वो ऑनलाइन पे दिख गई, अब हमें लगता है खर्चना तो है या हमें ये खरीदना तो है, तो आप 24 घंटे का इंतजार करिए, उसके बाद ही उसे खरीदने की सोचें। देख आवेग ना करके चीज हम खरीद लेते, लेकिन जब थोड़ा सा रुक जाते हैं ना तो ऐसा लगता है नहीं ये फिजूल लग रहा है, अगले महीने ले लेंगे।
1: आदत होती दीपा खड़ा करने की, हाथ में खुजली होती तो नहीं लगता, मतलब पैसे वाली, अब कुछ तो कर ले, तो उन्हें ऑनलाइन सबसे अच्छा माध्यम लगता है।
0: तो उन्हीं लोगों के लिए ये है कि रुकिएगा, बिल्कुल तुरंत ही वो चीज जो है ऑनलाइन उसकी शॉपिंग ना करिएगा,
1: बिल्कुल
0: थोड़ा सा जाइए, हम कह रहे हैं 24 घंटा, आप 24 घंटा भी नहीं, आप 12 घंटे रुकिएगा, 12 घंटे के बाद आपके मन में वो जो उतावला है ना वो बिल्कुल
1: हो जाएगा। और जब खरीदने का मन नहीं करे तो आप अपने आप ही कहिए कि ये मैं खरीदूं या नहीं खरीदूं, इसकी कितनी जरूरत है या नहीं जरूरत, तो इस तरह की जब बातों पर विचार करेंगे तो भी आप अपने को रोक सकते हैं। और दीपा हम खुद को एक वित्तीय चुनौती देख सकते हैं, जैसे कि 15 दिन से हम कोई एक तय हुई राशि में ही चलाएंगे, उसे चलाएंगे, ऐसा करके देख सकते हैं कि सोची हुई

0: दीपा, अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं और बात करते हैं बचत के ऊपर।
1: बहुत
0: तो
1: जरूरी है
0: दीपा, बचत करने से पहले हम एक उसी का ही कमेंट है वो उठा लेते हैं। हमारे साथ लिखते हैं कि बचत हम दोनों ने अपनी बेटियों और बेटों को अजमेर शहर के बहुत अच्छे से स्कूल में पढ़ाया, बहुत अच्छी शिक्षा थी, तो हमें और बच्चों को भी शुरुआत से ही हाथ टाइट करके बचत करना अनिवार्य हो गया था। कभी बेटों को जब मैं स्वयं ही स्कूल की छुट्टी के बाद लाता और ये कहता कि कचौरी खा लो, तो बेटे कहते पापा जी खर्चा नहीं करना है, वैसे ही घर पहुंचकर भोजन करेंगे। ये सुनकर खुशी के मतलब उनकी आंखें जो है वो नम हो जाया करती थी और कहते मेरा मन सोचता कि मेरी मेहनत सफल हुई। अगर बच्चे समझने लग जाएं कि हमें कहाँ पे खर्चा करना है, कहाँ पे नहीं करना है, तो समझ लो कि माता पिता की आधी समस्या तो वही हल हो जाती
1: है। बिल्कुल सही। देखो ना, कई बार ऐसा होता है कि बिना सोचे समझे हम जब खर्च करते ले जाते हैं, तो फाइनेंशियल यानी कि जो वित्तीय अनुशासन है वो अगर हम नहीं रखते हैं तो हमें कभी ना कभी एक आर्थिक तनाव वो आ जाता है, थोड़ा सा एंजाइटी टेंशन ये सब चीजें आई जाती है। और फिर सहेलियों के मन ये सवाल आता ही है कि आखिर पैसे इतनी जल्दी खत्म हो क्यों जाते हैं,
0: है ना? बिल्कुल ऐसा होता है। और ये पता नहीं कि अगर हम जो है बिना योजनाएं बनाकर बनाए खर्च करते रहते हैं, छोटे छोटे जो खर्च होते हैं वो सुविधाओं के नाम पर होने वाला व्यय, अचानक की गई खरीदारी होती है और बचत को टालने की आदत यानी धीरे धीरे पूरे बजट को जो है वो बिगाड़ ही देती है।
1: अरे अरे मंजरी, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हम आपसे भी कहते हैं इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है।

0: राशि से हम अपने 15 दिन निकाल सकते हैं या नहीं। अक्सर लोग केवल किराया, राशन बिल जैसे खर्चों को ही बजट में शामिल करते हैं, लेकिन रोजमर्रा के कई छोटे छोटे अनियोजित व्यय धीरे धीरे पूरे वित्तीय संतुलन को बिगाड़ देते हैं।
1: ये बात तो बिल्कुल सही कही। और अब देखिए, कुछ ऐसे खर्च होते हैं जो अचानक से आ सकते हैं, जैसे उपहार खरीदना है, या कभी कभी ऐसा होता है ना, फल सब्जियों की अचानक कीमतें बढ़ जाती हैं, या बाहर कभी खाना खाने जाना पड़ सकता है कोई, या अचानक से कोई ट्रैवल यानी यात्रा पे निकलना पड़ सकता है, कोई मेडिकल खर्च भी आ सकता है, या दफ्तर में कोई छोटे छोटे योगदान होते हैं ना, हमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, इस तरह के भी खर्च आते हैं। तो इस ये भी आपका, इन सब का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बजट में शामिल करके रखना जरूरी है।
0: बिल्कुल। और देखो, हमारे साथी भी लिखते हैं कि महीने की शुरुआत और बचत का सीधा संबंध, शुरुआत अच्छी तो महीना अच्छा। सही, मिलते ही शुरुआती दिन में सबसे जरूरी वही खर्च करें जिनकी तारीखें फिक्स होती हैं, मसलन घर का किराया, बिजली का बिल, गैस पेमेंट, ईएमआई, बच्चों की फीस वगैरह, फिर आता है राशन, और घर में कोई पेशेंट है तो दवाइयां। इसके बाद कुछ पैसा घर में इस तरह से रख लो कि लगभग ऐसा लगे कि जैसे है ही नहीं, जो आड़े वक्त काम आ सके, किसी से मांगना ना पड़े। फिर इसके बाद आते हैं शौक वाले खर्च, जो तो वो अपनी आय और बचत के अनुसार का चाहिए, ना कि किसी दूसरे को देखकर। अगर आय के अनुसार बजट बनाकर खर्च किया जाए तो महीना बहुत आराम से निकल जाए।
1: और एक संदेश ये भी आ रहा है कि एक गीत सुना दीजिए।

0: बताइए
1: आपके दिल में क्या है।
0: मेरे दिल में तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, हम संदेश ही पढ़ेंगे फिलहाल तो अपने विषय पर। हाँ। तो हमारे साथी लिखते हैं कि आजकल बचत के बहुत सारे तरीके आ गए हैं, पर अपनी माँ के जमाने में हम देखते थे कि माँ एक अलग से अपना गुल्लक टिन या पाउडर वाले डिब्बे या किसी तरह के डिब्बे रखती थी। वे ज्यादातर रसोई घर में छुपा के रखा जाता था और कुछ महीने के अंत में कभी जरूरत पड़ा तो उसमें से निकाला जाता था पैसा। हम बच्चों को डरवा जाता था उस डिब्बे में कोई नहीं छूगा, उसमें भगवान का पैसा रहता है, पाप लगेगा। अब कभी माँ निकालकर कुछ करके बाजार से मंगवाती थी तो कहते थे कि ये तो भगवान का पैसा। माँ बोलती थी कि अन्नपूर्णा भी देवी माँ ही है, उन्हीं के नाम पर आ रहा है। क्या बात है,
1: क्या बात है,
0: माँ तो माँ ही होती है आखिर, है ना।
1: सही कहा। और एक संदेश में हमारे श्रोता भाई ने लिख भेजा है कि मेरे बड़े भिक्षर कहा करते थे कि जीवन में 3 मित्र जरूरी है, इससे बचत के स्रोत कही है मित्र। वो ऐसे मित्र है जो विपरीत परिस्थितियों में हमारे संकट मोचक साबित हो सकते हैं। पहला की बचत, दूसरा है सोना या गहना, और तीसरा है आपके खुद का मकान। मैंने उनकी बातों का अनुसरण करते हुए छोटी छोटी बचत के द्वारा शुरुआत की, जैसे पोस्ट या बैंक में 5 साल की अवधि के लिए रिकरिंग अकाउंट वाली है। इन अकाउंट की अवधि पूरी होने पर उसी रकम को फिक्स्ड डिपॉजिट में तब्दील करता गया। 15 साल के बाद खुद का मकान बनाने में मुझे बड़े भाई जैसा साथ मिला हो ऐसा महसूस हुआ, वो भी बगैर लोन लिए। उसके बाद बेटे बेटी की शादी के लिए अग्रिम तैयारी स्वरूप समय समय पर घने बनवाता गया। क्या थे आज सेवानिवृत्त होने के भी ये सब कुछ बातें ठीक चल रही है। तो भाई तरह के अगर परिवार का साथ हो तो फिर तो देखिए बचत में और आपको दुगनी सहायता ही मिलेगी।
0: बिल्कुल। और एक हमारे साथी लिख के, जब पहली तारीख को तनख्वाह आती इतना सारा पैसा एक साथ देकर मन ही मन बहुत से प्लान शुरू हो जाते थे, उस समय हाथ भी नहीं पाता। जब एक एक करके पैसे देने यानी फीस राशन पानी दवा डॉक्टर आदि में निपटाने लगते थे तो कैसे फुर्सत उड़ता था, पैसा पता ही नहीं चलता था। और महीने के शुरू से ही कुछ एक चौथाई पैसा अलग पाकर रख देते और भूल जाए, और फिर पूरे महीने का राशन दवा और डॉक्टर के पैसे बच्चों फीस घर में काम करने वाली महिलाएं आदि को दे दे, बीच बीच में 50 रुपए एक गुल्लक में डाल दे। अगर हाथ में पूरा पैसा होगा तो अधिक तेजी से खर्च होता है, दबाए हुए से आड़े वक्त में काम आते हैं। बहुत अच्छे से अपने बात के
1: जी रखी है। और हमारे सभी साथी बचत के मामले में इतने सतर्क हैं और हमेशा करते हैं और अलग सुझाव रहे, उसके लिए हम आप सभी का धन्यवाद देते हैं। अंजलि हमसे एक सवाल पूछ रही थी, क्या सवाल था?
0: ये सवाल हम ये पूछ रहे थे कि ये बताओ कि वन तुमने देखा है ना, हरियाली वहाँ की बहुत मन को मोहती है, तो क्या कभी तुमने उस पर ध्यान दिया कि वन में कौन कौन से वृक्ष लगे होते हैं?
1: बहुत सारे लगे होते हैं, कई बार जाते हैं ना तो लगातार कभी बरगद के पेड़ दिखने लग जाते हैं, नीम होते हैं, पीपल होते हैं, और भी कई कई तरह के कहीं कहीं आम के बगीचे लगातार यात्रा में जाते हैं ना।
0: और वनों में जब हम जाते हैं तो ये तो तुमने सही बताया, लेकिन इसके साथ साथ महुआ है, पलाश है, तेंदू है, सेमल है, आंवला है, जामुन है, खैर, बबूल, चंदन, शीशम, चीड़, देवदार, साल, सागौन, ये सारे पेड़ भी वहां पर दिखते हैं। तो जब कभी वन की तरफ रुख करना तो इन पत्तों को, इन पेड़ों को बहुत ध्यान से देखना, तो बड़ा मजा आएगा,
1: बहुत मजा आता है। उनके अलग अलग आकार, किसी कोई पत्ता चौड़ा होता है, कोई लंबा होता है, किसी की धारियां बहुत साफ सफाई से दिखती,
0: कोई बड़े खुरदुरे भी होते हैं कि उंगली लगाओ तो तुम्हारे उंगली में भी छिलने जैसा एहसास होगा, ऐसा भी होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो भाई देखो, कहते हैं कि वन महोत्सव जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जा रहा है, तो एक पेड़ लगाए 100 खुशियां पाए, हरियाली बढ़ाए, धरती को स्वर्ग बनाए, इस वर्ष की थीम है हरित पहलों के माध्यम से पृथ्वी का संरक्षण है। इसके अलावा ये मुहिम चलाई जा रही है कि एक पेड़ माँ के नाम, पेड़ प्रति लगाओ बचाओ जैसे नारे जागरूकता बढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी कि हमने जो पौधा रोपण किया है दीपा, उसकी देखभाल एवं उसके बढ़ने फल फूलने तक का ध्यान रखा जाए, पानी समय पर देना है, उसको कोई और क्षति तो नहीं पहुंचा रहा है, इस बात का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल। और इसकी शुरुआत 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर KM मुंशी इनके द्वारा हुई थी, तभी से इसे पेड़ लगाने का त्योहार भी कहा जाता है। हर साल एक, जैसा कि अभी आपने बताया, हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे हमारे देश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। पेड़ों से प्राण वायु ऑक्सीजन मिलती है, वर्षा चक्र संतुलन में रहता है, तापमान नियंत्रित करते हैं, मिट्टी के कटाव

0: तनाव को रोकते हैं। इनमें अनेक जीव जंतु पशु पक्षी निवास करते हैं, उन्हें भोजन मिलता है और हम सभी को अनेक आवश्यकताएं इन्हीं से पूर्ण होती है।
1: बिल्कुल, और इनको बचाना भी बहुत आवश्यक है क्योंकि कटाई इसकी रोकनी होती है, वरना आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा। जो वनों को बहुत काटते जाते तो हमें ध्यान रखना पड़ता है, और इसको अगर थामा नहीं तो प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ और गर्मी की दिक्कतें हमें झेलनी पड़ जाती है। तो कहना चाहिए प्रति व्यक्ति को वृक्ष लगाना चाहिए और उसकी देखभाल के प्रति भी सजग रहना चाहिए।
0: बिल्कुल, और इसी तरह के बहुत सारे संदेश भी हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे, लेकिन सुनते हैं क्या
1: एक गीत।

0: ऐसे ही जो काली काली घटाएं है ना, हर जगह हर तरफ बस ये बरखा रानी इसी तरह से बाहर बरसा दे, यही हम चाहते हैं।
1: बिल्कुल, हमारे साथी लिखते हैं दीपा, वन महोत्सव के सप्ताह के दौरान स्कूल कॉलेज सरकारी संस्थान वृक्षारोपण अभियान वहाँ पर चलाया जाते हैं और लोगों को पौधे वित करते हैं और पर्यावरण हरा भरा बनाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम और आम बहार आपके द्वार जैसे विषय विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें देशी और फलदार वृक्ष जैसे आम जामुन अमरूद नीम के रोपण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। और दीपा, जो हमारे जो पेड़ है उनसे हमें क्या मिलता है, वृक्ष जब लगे होते तो देखो लकड़ी की और लकड़ी और इमारती सामान मिलता है, जल जलाव की लकड़ी मिलती है, औषधि जड़ी बूटियां, शहद, फल, जामुन, आंवला, बेल आदि, मेवे, मशरूम, बांस और बेत भी मिलते हैं, गोंद, लाख, राल, ये सब चीजें इन सब, घास और चारा मिलता है पशुओं के लिए, और वन्य जीव पक्षी जो है वो वहां पर जीव जंतु है, पशु पक्षी वो सब वहां पर निवास करते हैं। तो कहना चाहिए कि हमें वृक्ष लगाने चाहिए और वनों को कटने से उसको जो है रोकने से बचाना चाहिए और तभी हमारा जो जीवन है वो सफल हो पाएगा।
0: बिल्कुल, सफलता सफल जीवन के लिए देखिए अच्छा वातावरण तो बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और स्वास्थ्य अच्छे के लिए अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन करना बहुत जरूरी है। तो देखिए बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने लिख भी दिया है, बहुत सारे सीजन अलग तरह से आई है, पंजाबी छुए और डोरे की, तो मंजरी आप पढ़ रहे हैं या हम पढ़े?
1: कोई पढ़ सकता है,
0: पढ़िए आप पढ़िए।
1: चलिए तो हमारे एक से लिखते हैं छोले भटूरे की रेसिपी, कप काबुली चने रात भर भिगे हुए, दो प्याज बारीक कटे हुए, दो टमाटर पिसे, एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, दो तीन हरी मिर्च, एक छोटा चम्मच जीरा, इतना ही आप ले, और आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक या दो छोटे चम्मच ले सकते हैं, और लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार, चम्मच छोटा छोले मसाला पाउडर लेना है, आधा चम्मच छोला मसाला लेना है, इन्होंने लिखा है, नमक स्वाद अनुसार, दो बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा धनिया, चनों को नमक प्रेशर कुकर के साथ में

0: पानी डालकर 5-6 सीटी के साथ इसको उबाल लें। एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें प्याज सुनहरा होने तक भूने, अदरक लहसुन पेस्ट डालें, टमाटर सारे मसाले डालकर तब तक पकाएं जब तक तेल अलग न हो जाए। अब चले और थोड़ा सा गर्म पानी डालकर 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। इसमें हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें। भटूरे की सामग्री दीपा, इसकी सामग्री है 2 कप मैदा, 2 चम्मच सूजी, 2 बड़े चम्मच दही, 1/2 छोटा चम्मच चीनी, 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 बड़ा चम्मच तेल, गुना पानी तलने के लिए तेल है आपको, मैदा सूजी नमक चीनी और बेकिंग सोडा मिलाएं, दही और तेल डालकर गुनगुने पानी से आटा गूंथ लें, आटे को ढककर 2-3 घंटे के लिए रख दें। छोटी लोइयां बनाएं जब आपको बनाना हो और गरम तेल में मध्यम तेज आंच पर गरम करें और मध्यम तेज आंच होनी चाहिए, दोनों तरफ भटूरों को उसमें सुनहरा तल लें और बस भटूरे तले पर बहुत ही अच्छे बनते हैं। और इसको परोसना है तो आप कटा प्याज, मिर्च, नींबू और आम के आचार के साथ चूल्हे के संग में परोस।
1: ये भोजन का आप स्वाद का आनंद लीजिए और साथ मिलिए इस गीत का आनंद।

0: तो साथियों, आज तो ये समय कह रहा है कि हमारे चलने का वक्त हो गया है।
1: लेकिन चलने से पहले एक बात हमारी सखी लिखा है, जंगल हम लोग बात रहते वनों, तो उन्होंने कहा कभी कभी वो वन बहुत शामिल हुई जहाँ पर पत्तों पर वहाँ के जिया सारों से जाते थे और झाड़ बेरियां और

0: और जंगली पत्थर बैठकर प्रेम से भोजन करते थे, इन्हें लिखा है। तो भाई वन तो ऐसे हैं कि हम उनको छू कर महसूस कर सकते हैं, वहां जाके देख सकते हैं, वहां पर पूरी आत्मिक शांति मिलती है ना।
1: तो हम तो आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपने खूब आनंद लिया होगा। आप अपना अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखिएगा
0: और अब लेते हैं विदा कार्यक्रम से। तो सबको मंजरी
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: सत नवकरम में आज हमने आमंत्रित किया है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शलता दिलीकर को। इनसे बातचीत करनी है ममता सिंह।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह और ये है कार्यक्रम सेहतनामा। दोस्तों स्वास्थ्य ही जिम की सबसे बड़ी पूंज है। जब बात महिलाओं के स्वास्थ्य की हो तो जागरूकता और सही जानकारी बेहद जरूरी हो जाती है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो महिला के जीवन से जुड़ा है। महिलाओं का स्वास्थ्य, हार्मोनल बदलाव, पीसीओडी, प्रजनन स्वास्थ्य और आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव। तो इन महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशालता देवलेकर जो नासिक से आई हैं। डॉक्टर आशालता देवलेकर, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: थैंक यू।
1: ऐसा लग रहा है आपको?
2: बहुत अच्छा।
1: स्टूडियो में आकर
2: बहुत ही अच्छा लगा
1: जी। आज एक बड़ी समस्या हो गई है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है, जिस पर सजगता बहुत जरूरी है, वो है पीसीओडी। ये पीसीओडी क्या है और क्या ये हार्मोनल बदलाव के कारण होता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
2: यस, अभी पीसीओडी बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। और पीसीओडी क्या है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसका फॉर्म है, पॉली यानी जा और सिस्ट। पीसीओडी के

0: पीसीडी और पीओएस. पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. जो पीसीओडी हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे होता है, और पीसीओडी क्लियरली होता है सिस्टिक ओवरीज. और जो पीसीओएस है जो उसमें मल्टीपल डिसऑर्डर होता है, सिम्टम्स होते हैं, ज्यादा लक्षण होते हैं, इसमें फर्टिलिटी पर इफेक्ट करता है. ये आजकल यही है पीसीओएस.
1: इसके लक्षण क्या है, मतलब क्या है इसमें खतरा क्या है?
0: पीसीओडी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज. और ये जो है ये फर्टिलिटी पे इफेक्ट करता है. फर्टिलिटी तो इफेक्ट करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ शुगर भी हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, और आगे बहुत आगे चल के एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है. ये जितना सिंपल है उतना खतरनाक भी है ये बीमारी.
1: तो पीसीडी असल में क्या है, ये क्या हार्मोनल इम्बैलेंस?
0: पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है. क्या होता है, अभी जो अपने बच्चे आती है हमारे पास, 10 बच्चों में से 6 बच्चियों में ये साइन दिखते हैं पीसीओडी. तो इसका बहुत ज्यादा ही प्रमाण हो गया है. रिप्रोडक्टिव एज जो होता है बच्चियों का 14 से 35 ये करता है, और ज्यादातर 20 से 30 उम्र के बच्चों में ये दिखता है. जो डिसीज है लाइफस्टाइल चेंज डिसीज है, लाइफस्टाइल चेंजिंग, डाइट, स्ट्रेस, ये तीन फैक्टर इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं. और ये तीन फैक्टर के वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है
1: जी.
0: और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाने के वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं. जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन जिसको बोलते हैं और एंड्रोजन बढ़ने लगते हैं, और ये बढ़ने के वजह से ओवुलेशन जो है ब्लॉक हो जाता है. तो इसके वजह से नॉर्मल ओवुलेशन नहीं आता है, पीरियड रेगुलर नहीं आता है, ओरी सिस्टिक हो जाती है और इरेगुलर हो जाता है
1: जी. तो इसके जैसे कि आप लक्षण बता रहे हैं, पीरियड्स नहीं आते हैं रेगुलर, तो ये तो बड़ी समस्या हो जाती है ना लड़की की, महिलाओं की, उनको स्ट्रेस बढ़ेगा. अगर स्ट्रेस और बढ़ेगा, समस्या और बढ़ेगी, तो इसका क्या इलाज है?
0: हाँ, तो इसके लक्षण बताती हूँ मैं. पहला इसमें फर्स्ट लक्षण दिखते हैं पीरियड का इरेगुलर हो जाना, और पीरियड का फ्लो कम हो जाना, स्कैंटी पीरियड्स बोलते हैं, कभी ज्यादा भी हो जाना. कभी 2 महीने के अंदर पीरियड आते हैं, 3-3 नहीं आते, ये 6-6 मंथ नहीं आते हैं, और कभी मेडिसिन लेके ही पीरियड्स आ जाते हैं. वजन ज्यादा बढ़ता है, चिड़चिड़ापन रहता है, एक्ने आते हैं, पिंपल्स आते हैं, रफ फेस दिखता है
1: जी.
0: और मूड स्विंग होते हैं, आलस आता है, बाल झड़ते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेयर ग्रोथ, अनवांटेड हेयर स्किन पे रहते हैं, अपर लिप्स पे रहते हैं, बॉडी पे अनवांटेड हेयर आने लगते हैं, और इनफर्टिलिटी में ये बहुत इफेक्ट करता है. आंचल के शुगर, थायराइड, वो सब होता है.
1: इसका इलाज इस तरह से संभव है?
0: हाँ, इसका इलाज संभव है. इसका इलाज है कि नेचुरल से संभव है, जैसे वेट लॉस. पीओडी के पेशेंट में देखो 80% पेशेंट में और वेट रहते हैं, पेशेंट वेट ज्यादा हो जाता है. तो का इलाज है वेट लॉस और एक्सरसाइज. एक्सरसाइज तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज. तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, यानी
1: मेडिटेशन.
0: तो एक्सरसाइज, योगा, सूर्य नमस्कार, पावर योगा, वॉकिंग, एरोबिक्स, कार्डियो, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं, ये सब एक्सरसाइज कर सकते हैं. 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम. एक्सरसाइज इतना किया तो भी 35% तक पीसीओडी वर्स हो जाते हैं. और डाइट.
1: तो अब आगे बढ़ने से पहले गाना सुन लेते हैं. आपकी बंद का कौन सा ना?
0: अच्छा, एक प्यार का नगमा.
1: प्यार का नगमा है मौजू की रोने. सुनते हैं ये गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीत है इसमें.

0: जाने के बाद डॉक्टर आशालता आप जिक्र किया कि पीसीओडी यानी ये एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस असंतुल है और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी होता है। तो इनफर्टिलिटी के लिए पता चले कि हाँ बच्चा नहीं हो रहा है किसी कपल को, क्या है जांच पद्धति और क्या है उसका ट्रीटमेंट बताइए। पहले जांच पद्धति बताइए किस तरह से।
1: जब इनफर्टिलिटी के पेशेंट ओपीडी में आते हैं तो 1 ईयर कुछ प्रिकॉशनरी यूज करते हुए भी उनको प्रेगनेंसी नहीं कभी हो रही है तो फर्स्ट हम करते हैं लेडीज में मेल में ओवुलेशन स्टडी कि ओवुलेशन स्टडी एक सोनोग्राफी होती है और उसमें पता चलता है कि उसका यूटेरस सही है, यूटेरस की मेजरमेंट क्या है वो सही है, गर्भनलिका जो है वो सही है, एंडोमेट्रियम थिनेस जिसको हम कहते हैं अंदर का अस्तर वो सही है, ये सब पता चलता है। फिर उसके कोई हार्मोनल टेस्ट रहती है उसमें रहता है, ब्लड टेस्ट रहते हैं वो पीरियड के सेकेंड डे से करना पड़ता है और वो कलेक्ट करते हैं। उसमें FSH रहता है, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन बोलते हैं, LH रहता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, लिपिड प्रोफाइल रहता है और सबसे बड़ी चीज ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं। ग्लूकोज का पूरा टेस्ट करते हैं, फास्टिंग पीपी और उसमें कुछ आना 120 के आसपास तो HbA1c टेस्ट रहता है और फर्टिलिटी के लिए AMH लेवल एंटी मिलेरियन हार्मोन की लेवल रहती है करना पड़ती है। इतना ब्लड रहता है और सोनोग्राफी, ये दो टेस्ट बहुत जरूरी है और मेल पार्टनर में सेमेन काउंट सेमेन एनालिसिस।
0: और अभी तो तकनीक काफी एडवांस हो गई है तो इनफर्टिलिटी की जांच के लिए और भी कुछ जांच की पद्धति आ गई है तो पता चल जाए कि हाँ इन्हें बच्चा ना होने का क्या कारण है, उसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। जैसे लेप्रोस्कोपी है क्या?
1: हाँ, वो थोड़ा जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लेप्रोस्कोपी IVF या IUI एडवाइज हम लोग नहीं कर सकते है, हम नेचुरल वे से पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक करेंगे और उसको

0: लिए कंसीव की वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में क्रोमिन देते थे, लेट्रोस देते, लेट्रोसॉल और मल्टीविटामिन डी थ्री ओमेगा थ्री, और क्या कम है दिख जाए पेशेंट कुछ सीएनसी है बिटवेल हो ये सब देकर, और नहीं हो रहा है तो रहते आगे चल के उनका टेबल है कि नहीं वो एक ही चीज रहता है, तो वो सभी के भी नहीं हो रहा है नॉर्मल कुछ ज्यादा दिन ब दिन ज्यादा बढ़ रहा है तो आगे के उनको लेप्रोस्कोपी से करते हैं।
1: तो ये भी इनफर्टिलिटी भी एक ऐसा कारण है जो स्ट्रेस को बढ़ावा देता है। आज हम बात करना चाह रहे हैं पीओडी और महिलाओं की अन्य तमाम समस्याओं पर, और आपने कहा डॉक्टर साहिबा कि जब पीसीओडी का इम्बैलेंस होता है तो बहुत सारी समस्याएं होती लक्षण है जैसे पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना। तो पीरियड्स का इरेगुलर होता है कई बार कई महिलाओं को कई लड़कियों को हैवी ब्लीडिंग होती है, भयानक पेन होता है, तो दर्द से निजात पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, और ये भी सुना है कि फिर फाइब्रॉइड हो जाते हैं या हैवी ब्लीडिंग की वजह से, इसके बारे में जानकारी दीजिए कि क्या है फाइब्रॉइड्स और
0: यूटेराइन फाइब्रॉइड और सीस्टी जो है। तो मेडिसिन लेकर देखते हैं पेशेंट को, अगर उसका साइज ज्यादा हुआ फाइब्रॉइड बहुत ज्यादा बढ़ा तो वो सर्जरी करना पड़ता है इसका।
1: क्या पता चलता है कि फाइब्रॉइड्स है या नहीं?
0: यूएचजी में सोनोग्राफी में उसका परफेक्ट मेजरमेंट आता है
1: जी,
0: सोनोग्राफी के माध्यम है उसको
1: जी। तो क्या फाइब्रॉइड्स का ऑपरेशन करना जरूरी होता है या ट्रीटमेंट ठीक हो जाता है?
0: शुरू शुरू में तो ट्रीटमेंट ही देना जरूरी है, और ट्रीटमेंट से नहीं हो रहा है बढ़ रहा है मेजरमेंट उसका तो सर्जरी करना पड़ती है
1: जी। तो एक गाना और सुने आपकी पसंद का, कौन सा?
0: अजीब दास्ता
1: है जी, सुनते हैं, बेहतरीन गाना चुना है, लता मंगेशकर की आवाज है।

0: आपने कुछ लक्षण बताए हार्मोनल असंतुलन होता है तो, और क्या क्या लक्षण होते हैं जब हार्मोनल असंतुलन होता है, और इनको क्या नजरअंदाज करती हैं कई बार महिलाएं, तो क्या कुछ मुश्किलें आती हैं जब इन्हें नजरअंदाज करती हाँ। छोड़ देती हैं?
1: ये तो जब फिजिकली होता है तो उसको समझ में आता है कि नहीं उसको ये हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है इस फेज में, उसको नजरअंदाज कर दिया जा सकता है। तो मेंटल स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन है जिसे, और काउंसलिंग पार्ट इसमें बहुत ज्यादा।
0: तो काउंसलिंग किस तरह की होनी चाहिए?
1: काउंसलिंग जब डॉक्टर के पास जाते हैं पेशेंट, तो डॉक्टर भी अच्छे जब काउंसलर डॉक्टर हो गए तो पेशेंट का रेपो अच्छा हो जाता है उनसे, फ्रेंडली जब वो अच्छे से समझाते हैं तो आराम इधर ही हो जाता है ऐसा मुझे लगता है।
0: जी।
1: और डीप ब्रीदिंग जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट थिंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़ी अभी जो चाहिए इस जमाने में, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, और उसका स्लीपिंग वो पार्ट है प्रॉपर स्लीप वो होना चाहिए, और समझाना चाहिए सब। और एक है पॉजिटिव रिलैक्सेशन, जो तुम मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, पॉजिटिव प्रोसेस, पॉजिटिव थिंक प्रोसेस और पॉजिटिव विजुलाइजेशन, ये बहुत बड़ी बात है।
0: जी डॉक्टर आशालता, पीसीओडी एक बड़ी समस्या है, हार्मोन्स का असंतुलन, तो इसमें डाइट्स का कितना बड़ा योगदान है? क्या डाइट्स के जरिए ठीक किया जा सकता है, खान पान के जरिए किस तरह से ठीक किया जा सकता है?
1: डाइट के जरिए 35 तक ठीक कर सकते हैं पीसीओ, 35% तक ठीक कर सकते हैं।